فيها

0: और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बा कब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते ही, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है।
1: ला युकल्लिफुल्लाह

0: ॾींहं में हमिलो करे सघूं था, थी सघे थो जुमे या छंछर ते ईरान मथां हमिलो करे छॾियो। ईरान अवाम जी हालत तमामु घणी ख़राब आहे, उहे फौरी डील चाहिनि था। आबनाए हुर्मुज़ खे कंहिं बि वक़्तु खोले सघूं था, पर उन हवाले सां का बि तकड़ न आहे। चीनी सदर मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, चीन जो दौरो बि तमामु घणो कामयाबु रहियो।
1: दुश्मन जी चालाकियुनि मां ज़ाहिर थिए थो त उहे जंग जे नए दौर जी ग़ुलामी आहिनि। वधंदड़ मुआशी दबाउ ऐं घेराव ईरान खे हथियार फिटाकण ते मजबूर नथो करे सघे। सदर ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ जो रद अमल। ईरानी परे वज़ीर अब्बास राची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज़ मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद अमल ॾींदासीं। ईरानी नायब परे वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमरीका अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बीचारे जो मुक़ाबलो करण लाइ तयारु आहियूं।
0: ईरान ऐं अमरीका जी वेड़ खे रोकण ज़रूरी आहे। हिकु तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि क़दमनि जी मुख़ालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक़। बेजिंग में रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतयाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआति कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि था। पुतिन चयो त आलमी सतह ते इस्तक़ाम बरक़रार रखण लाइ चीन ऐं रूस जो किरदारु अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जे गॾियल पधराई ते सहियूं बि कयूं वयूं।
1: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां चीन जे आला सतह वफ़द जी मुलाक़ात। चीनी वफ़द जे नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जे नायब चेयरमैन जी अॻुवाणी में वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं चीन विच में तारीख़ी ऐं स्ट्रेटजिक सहकार ते ॿधल भाईवारी खे सराहींदे चयो त पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटजिक माहिगी जे बुनियाद ते दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तो क़ाइमु आहे। वज़ीर आज़म सां बरतानिया जे क़ौमी सलामती वारे सलाहकार जोनाथन पावल जी बि मुलाक़ात। मज़बूत मुस्बत मुस्तक़बिल ते ॿधल लाॻापन खे वधीक हथी वठाइण वारे आज़म वरचायो। बरतानवी सलाहकार जोनाथन पावल जी मुलाक़ात सफ़रतकारी में पाकिस्तान जी तामीरी किरदार जी वाखा।

जब कोर्ट में पेश हुई है तो उसने वो वहाँ पे ये बात की है, और वो चूंकि बहुत चलाक सी मुलजिमा है तो उसने ये कहा सिर्फ जो रिमांड को डिनाई करने के लिए, ताकि उसको रिमांड ना उसका ना मिले, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो चीज रिमांड में है। मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल बेस्टेस बात है। इसलिए विश्व की तफ्तीश अभी देखी शुरू हुई है, उनके नाम आए हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्री मेच्योर कोई बात करना नहीं चाहूंगा। कोर्ट में पेशी के दौरान जो बेजाबतियां हुई उसके ऊपर हम एक एसएसपी के खिलाफ एक्शन लिया, एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया, एसआईओ के

पैदा होता है और फल फिर अपनी असल की तरफ लौट जाता है, यानी आखिर में फिर बीज रह जाता है, सारा खा लिया जाता है, बीज छोड़ दिया जाता है। इंसान भी मट्टी से पैदा हुआ है, फिर मट्टी हो जाता है और फिर उठाया जाएगा। फलों की खुशबू बता देती है, रंग बता देता है कि फल मीठा है कि फीका है। इसी तरह इंसान के आमाल में जब इखलास होता है, खुलूस होता है, नेक नियति होती, तो क्या होता है, उसके अंदर भी ऐसी ही खुशबू होती, खैर होता है, जिससे दूसरे फायदा उठाते हैं, फिर दूसरे उसका कुर्ब चाहते हैं। जो इंसान बदअखलाक होता है वो कड़वे फल की तरह होता है कि जो कोई भी खाना नहीं चाहता। अच्छा, इसी तरह फल जब पक जाता है ना, झुक जाता है, भारी हो जाता है ना, झुक जाता है, इसी तरह इल्म जब पक जाता है, इल्म जब पुख्ता हो जाता है, तो इंसान के अंदर आजजी आने लगती। एक वक्त आता है कि जब नया नया इल्म आता है तो इंसान के अंदर थोड़ा तकब्बुर भी आने लगता है, दूसरों को गुनाहगार समझने का ख्याल आने लगता है। लेकिन जब इंसान सही मानों में पक जाता है तो फिर ये कैफियत खत्म हो जाती। इन नफी ज़ालिकुम, यकीनन इसमें, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान लाए, मानने वाले लोगों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, अल्लाह को मानने की बजाय जिसने ये सब कुछ पैदा किया था, क्या करना शुरू कर दिया, वजअलू लिल्लाहि शुरका अल्जिन्ना, जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना लिया। इंसान की ये कमजोरी रही है कि हमेशा पुरअसरार चीजों की तरफ मायल होता है, तजस्सुस रखता है, और जब किसी चीज में पुरअसरारियत देखता है उसको खुदा का शरीक कर लेता है, उससे मदद चाहने लगता है। इसीलिए लोगों ने हर जमाने में फरिश्तों को, सितारों को, जिन्नात को माबूद बनाने की कोशिश की। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते, ला ताबुदुश शैतान, सूरत यासीन में आता है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सूरत अन्निसा में आप पढ़ चुके हैं, इन यदून मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदून इल्ला शैतानम मरीदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा था, या अबत ला ताबुदुश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमान असिया, फरमाया कि इन्होंने जिन्नों को खुदा का शरीक करार दिया, वखलकहुम, हालांकि अल्लाह ने उन सबको पैदा किया था, जिन्नों को भी, वखरखु लहू बनीन व बनातिन, और उन्होंने तराश लिए अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां, बगैर इल्म, बगैर इल्म के, अनजाने में, सुबहानहु, पाक है वो, वताला, और बुलंद है, अम्मा यसिफून, उससे जो लोग वस्व बयान करते हैं। यहाँ अल्लाह सुबहानहु व तआला की जो सिफत है वो बयान हुई है। अमूमन हम क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ, ये नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला के लिए लफ्ज अल्लाह सुबहानहु व तआला बोलना चाहिए, जैसे इस आयत में आए सुबहानहु व तआला। लेकिन अगर ये सब ना भी कह सके तो अल्लाह ताला कह दे, अल्लाह मियाँ कहना, अल्लाह को मियाँ बोलना अजीब सा लगता है, मगर अमूमन हम सुन के इतने आदी हो गए कि बेधड़क बेख्याली में जबान से यही निकलता है। मगर कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए कि एक ऐसे लफ्ज की बजाय एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करें, सुबहानहु व तआला अम्मा यसिफून, ये जिन खुदा के शरीक नहीं, वो पाक है इससे, और बहुत बुलंद है जो लोग बातें करते हैं, अल्लाह की जात इन तमाम चीजों से बहुत बाला, वो इतना बुलंद है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जिन उसका शरीक बन सके या उस तक रसाई हासिल कर सके। ये सब जिन्नात तो दरअसल क्या है, अल्लाह की मखलूक है, बदी उस समावाति वल अर्थ, नए सिरे से पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का, अन्ना यकूनु लहू वलद, उसका कोई बेटा कहां से हो सकता है, वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी तो कोई बीवी नहीं थी, तो बीवी के बगैर बेटा कैसे हो गया, तुम्हारे तो बीवी के बगैर बेटे नहीं होते, तो अल्लाह का कैसे हो गया, यानी एक अकल को लगती बात है ना, दुनिया में तो अमूमन ऐसा नहीं होता, तो अल्लाह से तुमने ये चीज कैसे मंसूब कर ली, वखलकुल्ल शैइन, उसे बेटे की क्या जरूरत, उसने तो हर चीज को बनाया है, वहुवा बिकुल्ल शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, ये है अल्लाह रब तुम्हारा, ला इलाहा इल्ला हु, कोई इला नहीं मगर वही, خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ, हर चीज का पैदा करने वाला, فَعْبُدُوا, बस उसी की इबादत करो।

देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: वो जो के 5 साल से कम उम्र है, लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: आप सुन रहे थे, अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

ऐं पितुर में नारी ऐं नौजवान मुबैना तौर ते गॾिजी आपघात करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त जमील मरी गोट में पढ़ियल नारी जीअं गुली ऐं नौजवान भूरो कुली वण में फाओ खाई आपघात कयो। दादू जो घोटु सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मुबैन तौर ते आपघात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयुमि कमराणी फाओ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो, बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो, घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पहर।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हर दिन
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
5: शामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
6: It's 11:15 AM.
0: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्याल रखो। ॾींहं जो तमामु गरम वक़्तु सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हांजे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: This program is brought to you by
1: Uncle Habib, Rishta Bharose Ka.
2: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Security forces, आयश ते हमलन जो मास्टर माइंड हो खारजी दहशतगर्द उमर बुरयाल मस्जिद बारां जमीन अंदर बैंकर ठहण सां गॾु बारूदी सुरंगूं बि विछायूं हुयूं. सदर वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी करू वज़ीर ॿिनि जो पाक चीन सफ़ारती लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते चीनी हुकूमत ऐं आवाम खे मुबारकूं. सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो त पाक चीन लाॻापा गॾियल इतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार ऐं मज़बूत दोस्त जो रोशन मिसाल आहिनि. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम सां हक़ीक़ी ऐं दिली मुहबत कंदो आहे. मौसम नक़वी चयो त पाक चीन दोस्ती मिसाली इतमाद मुहबत ते ॿधल सहकार जी मज़बूत अकास आहे. ईरान जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका जो नयूं तजवीज़ मिलण तस्दीक करे छॾी. ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तजवीज़ जो जाइज़ो वठी जवाब ॾिनो वेंदो. ईरानी सदर मसूद पेशकान चयो आहे त ॾाढ ज़रिए ईरान खे झुकाए नथो सघिजे. जंग जे ख़ात्मे लाइ हिकु ॿिए जो एतिराम ज़रूरी आहे.

पाकिस्तान तकरीबन 20 सालनि खां पोइ समुंड मां तेल ऐं गैस जी ॻोल्हा ॿीहर शुरू करे छॾी। कंपनियुनि सां गॾु प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदे ऐं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी थियण वारो सिलसिलो मुकमल। शुरूआती सड़पकारी 8 करोड़ 20 लख जे त मजमूई सड़पकारी या 1 अरब डॉलर ताईं थियण जो इम्कान आहे। इंडस ऐं मकरान ऑफ शोर पेंसिल में ब्लॉक अलॉट कया विया आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक पारां मुआहिदो तवनाई पॉलिसी तारीख़ी कामयाबी करार।

आरिय नौजवान परलो नथणा सां मुबैना तौर ते गॾिजी आपकात करे छॾियो। पुलिस चयो आहे त जमील बरी गोठ में पढ़ियल नारी जी अंकुरीअ नौजवान भूरो कोली वण में पाओ खाई आपकात कयो। नारी जी शादी थियल हुई। वधीक जांच करियूं पिया। दादू जे घोट सुमर खान कमराणी में नौजवान मुबैना तौर ते आपकात करे छॾियो। पीटीसीएल मुलाज़िम 25 साल कयूं कमराणी पाओ खाई ज़िंदगी जो अंत आंदो, कारण मालूम न थियो।

गोसपुर प्रयालो में चोरन ऋण बारे ॾिनो। गोसपुर में चोरन हिंदू व्यापारी के घर में चोरी दौरान व्यापारी बसंत लाल के शदीद जख्मी करे 20 लख फुर करे फरार थी पाया। प्रयालो में होटल तां लखे रुपये सामान चोरी। मुतासिरन जो सकर पीर जो गोठ धरणो। चोरी वापस करण जो मुतालबो।

0: अदाकारा मोमना इकबाल पारां पंजाब के एमपीए ते हिस्सा जो इल्ज़ाम एनसीसी आए एमपीए के तलब करे वरतो। अदाकारा मोमना इकबाल चवाए तो एक बासर सियासी शख्स घणे अरसे का खेस हिस्सा रो है एनसीसी आए एफआईए ए पंजाब पुलिस के शिकायत कई पर कार्रवाई न थी।
1: सन क्रॉप ग्रुप का
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
4: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाने अमाजे पेंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक परोस जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-760।
5: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो, बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो, बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो, घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो, हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ई पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो।
6: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन है, पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
2: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जो

0: कफील देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: deal.
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: लफ्ज़न में मज़म्मत तर्जुमान चयो आहे त गुलबुल समूद पेट्रोला खे रोकण ऐं काकुड़नि सां बदसलूकी आलमी कानूननि ख़िलाफ़ आहे। काफ़िले में शामिल पाकिस्तानी शहरी साद इदी समेत समूरनि इंसानी हक़नि जे काकुड़नि खे आज़ादु करण जो मुतालबो। स्पेन ऐं इटली पारां बि इसराइली क़दम जी मज़म्मत। स्पेन जे वज़ीर आज़म चयो आहे त पेट्रोला जे काकुड़नि जी इहा ॻाल्हि क़बूलण जोगी न आहे। पंजनि शहरनि सां बदसलूकी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। इटलीअ में इसराइली सफ़ीर जे तलबी वाक़िए जी वज़ाहत तलब कई वई आहे।

सिंध काबीना कराची के बीआरटी मनसूबे लाट जो कम तेज करण की मंजूरी डी छी कम में देर थे अगूणो ठीको रद्द एफ डब्ल्यू के कम देने की मंजूरी डी वही वे वजीर यूनिवर्सिटी रोड जो कम नवे दिन अंदर मुकम्मल करण की हिदायत नाकस कारकर्दगी या नाअहलियत अहदे से हटाने जो तरीकेकार भी मंजूर सिंध काबीना पारा वफाक का मुंतकिल थियल तबी इदारन के इंतजाम लाए नो कानूनी फ्रेमवर्क मंजूर किया पो।

सिंधाकोट कराची एस पी एस सी जा नतीजा मुअतल थियण वारो फ़ैसिलो 9 जून ताईं बरकरार रखी छॾियो। अदालत जो दरख़्वास्त गुज़ारनि उमेदवारनि ऐं कामयाब करार ॾिनल 71 उमेदवारनि खे केस में धुर पाइण जो हुकम। सिंध पब्लिक सर्विस

गडियल एतमाद स्ट्रेटेजिक सहकार ऐं मज़बूत दोस्ती जो रोशन मिसाल आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तानी अवाम चीनी अवाम सां हक़ीक़ी ऐं दिली मुहबत कंदो आहे। मोहसिन नक़वी चयो त पाक चीन दोस्ती मिसाली एतमाद ऐं मुहबत ते ॿधल सहकार जी मज़बूत अकास आहे। पखो में पसंदि परणो कंदड़ नौजवान ब ॿाहिरि क़तल, हथियार बंदनि। मुज़म्मल मेयो ऐं नदीम अली मेयो खे क़तल कयो। पुलिस मूजिब नौजवान काशिप अली मेयो मुगेरी बिरादरी जी औरत सां लाहौर जी कोर्ट में पसंद जो परणो कयो हो, जंहिं तां धुरनि में चिकताण हलंदड़ हुई।

हिंदुनि जे रुहानी पेशवा साईं सादराम जो आख़िरी रस्मूं रड़की दरबार में अदा कयूं पियूं वञनि। कुझु देरि में संदसि अग्नि संस्कार कई वेंदो। साईं सादराम जे अक़ीदतमंदनि जो ॾेह तोड़े परॾेह मां आमद जो सिलसिलो जारी। साईं सादराम सिंगापुर जे अस्पताल में इलाज दौरान ध्यानात करे वियो हो। पिथोरो बिनारी ऐं नौजवान परणो न थियण तां मुबैना तौर ते गॾिजी आपकात करे छॾियो। पुलिस चयो आहे त जमील मरीगोट में परणियल नारी जिया कोली ऐं नौजवान भूरो कोली वण में पाव खाई आपकात कयो। नारी जी शादी थियल हुई, वधीक जांच कयूं पिया। दादू जे घोट सूमर खान कमराणी में बि नौजवान मुबैना तौर ते आपकात करे छॾियो। PTCL मुलाज़िम 25 साला कयूम कमराणी पाव खाई ज़िंदगी जो अंतांदो, कारण मालूम न थियो।

और सासा। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्रीओ का हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालें, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी, आगा से प्रोग्राम किया जाएगा और आज एक बहुत प्यारा सा हम कलाम सुनते हैं प्रोग्राम के अंदर, और कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये आप लोगों को बताते हैं। तो आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट।

0: जनाब से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार फॉलो करेंगे उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में जो कि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया होगा। तो आज आप मुझे ये बताइए जरा क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं। क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना चेहरा रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? ये आज आप मुझे बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे। ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं। समझ रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस के अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है, लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ठीक हो गया, तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाईजान मार्केट में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो खूबसूरती जो है ना वो जितनी ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए खूबसूरती के बारे में कि भाई आपको खूबसूरती कैसे हासिल हो सकती है तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो बताया करें लोगों को भाई आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, खूबसूरत कैसे रह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाँ जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने हैं, क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है ना ये भी पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें तो उसमें आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। बाकी अगर हम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए वाइट एज ब्यूटी क्रीम आ जाती है और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है ना वाइट एज की लवली क्रीम आ जाती है। अब ये दो क्रीमें हैं, एक नाइट क्रीम है और एक ऐसा समझ लें कि डे क्रीम है। यानी कि अगर आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते तो वो आप रात के टाइम लगाएंगे, बाकी अगर आप वाइट एज लवली क्रीम लगाते तो वो आप पूरा दिन लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगाइए। ठीक है, रात में भी लगा सकते हैं लेकिन ये देखा जाए तो भाई उन लोगों के लिए जो कि अच्छी वाली फेयरनेस क्रीम की तलाश में और फेयरनेस क्रीम आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद होगी, जब आप वाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो वाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है और उसके साथ साथ वाइट एज का आप लोगों को साबुन मिल रहा है और उसके साथ आपको वाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार है और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ना हाँ जी डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि वाइटिश वालों का ही है, लेकिन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम नाम लेकर आप परचेज कर सकते हैं जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है जो कि आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेंगे, आपके चेहरे के एक्नी का कंट्रोल करेंगे, आप लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा लाते जाएंगे। क्योंकि जब एक्नी आपके चेहरे पर आ जाते तो यकीन जाने मजा ही नहीं आता, जिंदगी ऐसी अजीब अजीब सी लग रही होती है। तो अगर आप भी टीनेजर से अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी आना स्टार्ट हुए या फिर आप एक्नी से सफर करें काफी ज्यादा तो भाई आपको चाहिए कि आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी जो ट्यूब है ना वो जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएगा। और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए, जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं, यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रोज देख रहे होते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पर हुआ जाता है टाइम के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए, ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास साथ सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए प्रोग्राम वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। इट्स
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरतन खे जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

अच्छा आदर कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होती तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए। अच्छा अच्छा स्मार्ट किशोर भाई कहते हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है, स्मार्टू भाई आपको वेलकम करते हैं। और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगाकर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़कर चली जाए। बात में दम था वैसे। हजार खंड जो तो भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम कहते हैं, छाला लाजवाब वाइटेश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा। अच्छा एस एन अरबानी वालेकुम असलाम छाला खुशायो। हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम सुबह ए शाम को डॉक्टर लिखी दिन होता है एक दफो सुबह जो ॾिसो एक दफो शाम जो ॾिसो। ओके सो मां जमा का सवाल पुछो आहे त तव्हां डेली पंहिंजो मुंहुं जेको आहे आईने में केतिरा चकर ॾिसंदा आहियो, छा तव्हांखे हिन चीज़ जो अंदाज़ो आहे ॿुधायो मूंखे। और किशोर भाई कहते कि टॉपिक में सुबह ऑफिस जाते वक़्त देखता हूं फिर वापस आकर देखता हूं, अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो जाता है। अच्छा यानी तव्हां एॾा सुहिणा आहियो तव्हां पाण खे घड़ी घड़ी ॾिसंदा आहियो। सुठी गाला सुठी गाला। दर्दी दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी कैसी हैं। और उदास लड़की कहती टॉपिक मैं तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा करती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए। जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है।

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो न त हिकिड़ो ड्रॉप विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे समझो था बताते एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो दर्द दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ नाजुक दीदी टॉपिक को फॉलो किया है कहाँ फॉलो किया है यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते हैं इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं कहाँ से सुन रहे हैं मीरपुरखास से सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई जान को और उसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूँ तब चेहरा देखता हूँ बस ननिक्रो तपो बस ये भी सही है

अच्छा ही गानो न मानो के डेडिकेट जे के वाइट ऐसा प्रोडक्ट लगायन पया सोना ती जाए नल्ला सद को ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ वेरी नाइस इधर शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुक हमारे साथ मौजूद है नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम टंडो अलह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

रियाज अहमद लोहर भी हमारा शो सुन रही है, वेलकम। सदा खालिद कहते हैं मेरे मोबाइल सेट में आईना फिट, सो में 24/7 आईना देखता रहता हूँ, इससे मुझे अपने आप को समझने में आसानी होती है। क्या बात है, चाचा तो बाबा चाचा है ना। ये तो आज टॉपिक बड़ा सुंदर रखा है आपने, सच्ची बताए। अच्छा रियाज अहमद कहते हैं शो नाइस है आपका, वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम करते हैं आपको। और ये है जी चाचा खालिद कहते हैं खूबसूरती तो डी स्किन क्रीम से आसान और दिल की खूबसूरती व्हाइटिश लवली क्रीम से आसान। क्या मतलब, एक लगाते हैं दूसरी खाते हैं? ना करें।

0: हाँ जी, क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं। सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए। जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है? कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोहम्मद तैयब थे हाबी बुला थे बुके थे तमाम जो शो वेरी नाइस आहे। मुख्य गानो बुधरा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर बिल्कुल योगा ना जैसा जरूर बुधंदास। अमा ॿुधायां थी त मां पंहिंजो मुंहुं मुबारक जेको आहे केतिरा ॾींहं केतिरा दफ़ा जेको आहे न ॾींहं में ॾिसंदी वकास कहते फ्रॉम विलेज अली अच्छा शेदाद कोर से सही है। आपको हमारे शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। मेरे खास अब्दुल्ला महर वालेकुम अस्सलाम के बाजी, मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है। वाह साई वाह, ले कराए छो तवान दोस्त जी। अफा देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह सलामती, शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाईजान को, वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला नहीं बल्कि शुएब महर हैं बाजी। कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता, अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए। इशारा होगा कहाँ गया वैसे। चले यहाँ ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं। ऐसा भी मत किया करें, चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा, हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते। तो आप नहीं कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज।
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN News.

उत्तर वजीरस्तान के इलाके पनवाम में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन चार खारजी दहशतगर्द मारजी पाया। मारजी पल दहशतगर्दन में गुरबल खारजी दहशतगर्द उमर उर्फ

0: Words of Wisdom. Only on G Radio Media.
1: आप सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सखर मोरो मीर प्रकाश नटियारी सखर मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के दावन से। तो आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, खूबसूरतियों को बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाते जा रहे हैं। तो भाई जान मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो चाहता होगा कि भाई मैं खूबसूरत ना रहूं। हर किसी का खूबसूरत रहना ख्वाब होता है, सपना होता है और वो बहुत ज्यादा अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये जो पता नहीं आप क्या क्या कर रहे होते हैं ना, इसमें एक तो ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, दूसरा ये कि आप लोगों का पैसा भी बहुत ज्यादा जाता है। तो अगर आपके पास कोई सूटेबल सा प्रोडक्ट मौजूद हो जो कि लाइट वेटेड हो, जिसके लगाने के बाद आपकी खूबसूरती मेंटेन रहे, आप खूबसूरत होते रहे और आप लोगों को ये भी ना हो कि भाई जान कल जाकर हमारी खूबसूरती कहीं खराब ना हो जाए, हमारी स्किन खूबसूरती कहीं गायब ना हो जाए, जो मिल रहा है वो कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा जब आपके पास मौजूद होगी डे स्किन ब्यूटी क्रीम। क्योंकि डे स्किन ब्यूटी क्रीम अब मार्केट में आ चुकी है तो बिल्कुल जी छा चुकी है। ओके, मैं सर आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाजे आपको जो इनाम को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट आपकी स्किन को व्हाइट बनाती है और ये एक नाइट क्रीम है, यानी कि आप इसे रात के टाइम इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा जो है ना जदीद अजाद से तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट, और अगर आप इस्तेमाल करते तो भरपूर जो है ना आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगी। ये क्रीम रात भर जो है ना काम करती है ताकि आपकी जिल्द को चमकदार बनाए, डार्क स्पॉट्स हो या फिर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर देती हैं या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो भाई जान आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और उसके अलावा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन नरम हो जाती है, हमवार हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है और आपकी स्किन और कशिश होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है, विटामिन ई बीड्स के साथ साथ माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ जनाब ये क्रीम तैयार की गई डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको दे रहा है बहुत ही शानदार से रिजल्ट। तो आप इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए और अपने चेहरे पर ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये जो एक्नी मार्क्स हैं, ये जो आपकी स्किन डल हो चुकी है, इन सब चीजों को खत्म कीजिए क्योंकि आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है जनाब डी स्किन का फेस वॉश, क्योंकि अकेली क्रीम तो हम आप लोगों के लिए लेकर नहीं आते, उसके साथ आप लोगों के लिए सोप या फेस वॉश तो लाजमी होता है, होना भी चाहिए देखा जाए तो। तो डी स्किन का जब आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं जब आप डी स्किन के फेस वॉश को तो आपके दिल से बस एक ही ख्याल आता है कि ये क्या चीज बना दी है, इतनी जबरदस्त क्वालिटी दशात वाह वाह वाह। उनका अलावा जो ना हाइलोरोनिक एसिड आ है सीरम आ है ना जे अंदर जो तवाजी स्किन जे अंदर वनी करी तवाजी स्किन जी खूबसूरती के मेंटेन कंदो आ है, खूबसूरती के वधाई दो आ है, आई तवा की हमेशा खूबसूरत बनाए रखन दो आ है। सो डी स्किन जो फेस वॉश जो तवा इस्तेमाल कंदा ता जी हर स्किन टोन जलायो ना का वडी गाली आ है, तो तवा डी में बर्टी दफा लगायो सुबह जो मंजन जो राजो लगाए करे आई पांजी स्किन के क्लीन रखो आई पांजी स्किन के खूबसूरत बनायो। सो डी स्किन जा प्रोडक्ट तवा जला मार्केट में अची वया, अगर नथा मिलन तो तवा जे कोना पांजी करीबी जनरल स्टोर तवा नी मालूम करायो, नथा मिलन तो तवा डायल कयो 03-1579-0595 03-1579-0595। मुख्य कड़ी शिकायत भी मिली था तवा नंबर ते रातो घट पया गयो, हां छो ये छो कुटकी काई दो वो का नंबर ते रातो कयो बाबा उनन के बुधायो त तवा जे केड़ी एरिया में अवेलेबल ना है, किथे किथे मिलंदी होई बताउनन के बुधाए सगो ता। सो जल्दी जल्दी बुधायो, उन खा अलावा खूबसूरत ही ना वणो छो तो खूबसूरती तवा जे लाइ हाने आसान थी वई आए छो तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलन शुरू थी वई आए। उन खा अलावा जेको आ तमो जमा खा सवाल पुछो तो तवा पण जो चेहरो जेको आ वो रोजाना यानी कि डी हमें केतरा दफा दिसंदायो शीशे में असांजी आदत हूंदी आहे त घड़ी घड़ी पंहिंजो चेहरो आईने में ॾिसंदा आहियूं, घड़ी घड़ी ॾिसंदा आहियूं, ॾिसूं त छा थी वियो आहे. या जंहिंजी स्किन ते एक्नी हूंदा आहिनि त उहो वीचारो परेशान हूंदा, जंहिंजी स्किन ते एक्नी न आहिनि त उहो उनखे बि परेशानी हूंदी आहे. अक्सर मूं ॾिठो आहे माण्हुनि खे त उहो अलाए छो परेशान हूंदा आहिनि. इंसान जेको आहे न उहो कंहिं बि हाल में राज़ी न आहे हूंदो. सो इहे इंसान जी फितरत आहे, इंसान ॾाढो नाशुक्रो आहे. सो तव्हां जेको आहे न अगरि कंहिं बि वजह सां परेशान आहियो, एक्नी आहिनि तव्हांखे या फिर तव्हांजी स्किन में डलनेस अची वई आहे, इहे सभु नॉर्मल जेके न इहे मसला हूंदा आहिनि ज़िंदगी जे अंदरि, उन्हनि खे तव्हां फेस करे सघो था. उन्हनि जे लाइ तव्हांजे लाइ अलॻि अलॻि मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स तयार कया विया आहिनि, जंहिं मां तव्हां फ़ाइदो वठी सघो था, इस्तेमाल कयो, पंहिंजी ज़िंदगी जो इहे परेशानियूं त ख़तमु कयो, बाक़ी परेशानियुनि जो बि हल तव्हां वटि मिली वेंदो तव्हांखे. सो पंहिंजी ख़ूबसूरतीअ खे मेंटेन रखो, पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि रहो. आई बाबा असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो. Whitish and the Skin Beauty Show. अॼु भला तव्हां में छो हाल कोन्हे को, छो ईअं चुप करे वेठा आहियो? तव्हांजा मैसेजेस किथे आहिनि? तव्हांजा कॉमेंट्स किथे आहिनि?

लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी से बताइए। चाचा खाले जुड़ जो हमारे जी पैनल पर, वालेकुम अस्सलाम चाचा, की आयो खुश आयो, खैर सब खुश है तब घर में। और चाचा खाले तो गाने जी फरमाश गई है थोड़ो जो गाना तो वहाँ मुश्किल नहीं डिफिकल्ट बुधायो आए, अगर मिली हो तो मैं हलाइंदम, न मिलियो तो वरी सुबाने को बो गानो बुधी बटन सही है सुबाने वैसे जुम्मो अमू के लगे थे हाँ वाकई मैं सारी चीजें दुनिया की भूल सकती लेकिन अपनी छुट्टी नहीं भूल सकती मुझे निंद्र में भी पानी छुट्टी याद होती है। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए मौजूद है फ्रॉम न्यू जतोई सिद्रा, मुस्कान आप कैसी हैं, मुझे मास्टर मंजूर का कोई भी गाना सुना दीजिए। ओके जी डन हो गया। एडम कहती हूँ मुझे जानी जब आपकी भाई मेरी भांजियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी, वो अकेले कैसे आ सकती हैं, बनी तो थी वही पर मतलब नंदड़ी रह जी हुई है तो दिमाग बारन बार होते हैं। वफा अब्दुल गफार खास के लिए तवां जो मोहब्बत आहिनि भा, सजाद अली खास के लिए तवां सगड आहिनि ऐं दिलबर अली खास के लिए भी आहिनि, उन्हनि जी शादी आहे, उन जे लाइ तव्हां फायज़ा अली जो गानो ॿुधण चाहियो था। चलो ठीकु आहे, वैसे फायज़ा जो हिकिड़ो मूं गानो लॻायो पर शादी वारे गाननि जी फरमाइश अचे पई त भला हिकिड़ो शादी वारो गानो हणूं था लिस्ट में, जंहिंमें सभिनी खे राज़ी कयूं था, इहो फायज़ा जो हिकिड़ो हुयो न शादी वारो गानो।

चई वाजो गानो हलायो आ उन खा अलावा अगर तमा से सगट मौजूद आए किथे वाइट एज जा प्रोडक्ट नथा मिलन किथे डी स्किन जा प्रोडक्ट नथा मिलन मुखे जरूर लाजमी बुधाइना के असा के खबर पई त बाबा तमा वठो था नथा वठो तमा में हलचल आहे या कोन सिर्फ चुप करे सुमिया पे आयो पांजे घरन में अच्छा युसरा असांगे बुद्धि पर युसरा सिर्फ खाली पांजो नालो लिखी करे असांगे सेंड कंदी आ सो युसरा तवां जो मोहब्बत वान बाबा हां पांजो जंडो सबूत दींदा आयो थैंक यू सो मच मकसूद मल्हा कहते मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूं हेलो सिद्रा मुस्कान कराची गया था शॉपिंग करनी थी गुड बैकग्राउंड बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला थेबू कहते सॉन्ग बुधराए जो हाजिर हाजिर भाज तांजो गानो पकवा तवां ने सीट ते वेरो एरम कहते आप ही प्लीज प्ले हाँ यू गानो बेलाइंदा जी मकसूद कहते हैं सदरा मुझे भी तो गाना सुनाओ मास्टर मंजूर का गाना भी लिस्ट में मौजूद है आप जरूर सुनेंगे जी और कहते हैं मेहरापुर से आप हमारे साथ ही ओके जी सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत वाला शुक्रिया एक ही मैसेज को बहुत मतलब आपने शेयर कर दिया है थैंक यू जी फकीर राहिब माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण बेरिया सिटी कोट बहादुर मौला इस्लाम मदद भाऊ के चौथा भली करी आया और एरम चाहती जी आप ही जवाब है याद नहीं है जब मैं आईने में अपने आप को देखकर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर प्यार आता है वाह वाह ये अलग लेवल की बंदी है बाबा अच्छा प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमदाबाद वालेकुम अस्सलाम जी तेरे स्वीट शो कल वाला हाँ जी बहुत शुक्रिया कल वाला शो आपको पसंद आया थैंक यू जी थैंक यू और ये हमारे साथ हैं तेरे सामने मेरा हाल तुम्हें क्या सुनाऊं ए दिलरुबा वालेकुम अस्सलाम बाजी क्या हाल है आपका शो अच्छा चल रहा है तमाम सुनने वालों को सलाम के बाद शायद आपका मैसेज जो ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है पैनल पर जब भी मैसेज करें तो उसकी टाइपिंग जो ना वो उर्दू वाली टाइपिंग मत लिखा करें क्योंकि ऐसे जो ना थोड़ा मसला हो जाता है जब मैसेज मिसिंग पार्ट आ जाता है लफ्ज इधर के उधर हो जाते हैं तो अंग्रेजी वाली जो टाइपिंग ना वो लिखा करें और कश्यप हमारे साथ कहती आप बस क्या आपसे बहुत नाराज है अच्छा मुझसे क्यों नाराज है वैसे मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं

Vasayım faiz alıyor. भलो गानो गाए थी उन खां अलावा जिनजो शादी वाणी गानो नन के डेडिकेट आहे आ चाचा तवां जो ये मोहब्बतूं आहिनि बाबा चाचो डाडो भलो मानू तव सब बुधी छड्यो हिदायतुल्लाह चुप करे वेहिरो अब्दुल रज़ाक ज़रदारी हमारे साथ मौजूद है और ये है जी एसन कहते हैं कि टॉपिक आईनो कहेंजे हथ में हुजे या दीवार ते लगल हुजे या किथे भी आईने ते नजर पए चेहरो ॾिसी वठंदो आहियां सची ॿुधायां त मां बि कुझु ईअं ई कंदी आहियां

सोचां पई त हिननि सभिनी प्रोडक्ट्स मां जेको आहे न किशोर भाई कंहिं बि प्रोडक्ट मां इहो न चयो आहे त हाणे ही हीअं न हुजे आहे त मां लॻाए छो त हाणे हिन दफ़े न हिन चकर तव्हांजी हर फरमाइश ते मां सभु प्रोडक्ट खणी आई आहियां, यानी की इहो आहे न तव्हांखे मां इहो ऑप्शन या त हाणे तव्हांजे लाइ ही वारो प्रोडक्ट मूं वटि आहे कोन, सभु प्रोडक्ट आहिनि पर हाणे वरी तव्हांखे नाले में मसलो थी वियो आहे त ही नालो न ही नालो हुजे त पोइ असां हणंदासीं इहा सरासर बदमाशी आहे बाबा कुटकी जा हकदार तव्हां पक आहियो इहो ईअं त कमु कोन हलंदो न, ॾिसो कंहिंखे कंहिंखे साड़ थो थिए अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ माण्हू तव्हां खां सड़ंदव, अला वैसे सड़ंदा आहिनि पोइ कुझु ज्यादा सड़ंदा सम्झो था। ओके सो हज़ार भाई कहते ओके मेरा काम मेरे काम का टाइम हो गया, चले भाई काम भी जरूरी है, वाकई काम कीजिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे इतना टाइम और ये आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है। टाइम का चलता है जरा हम भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे तो आप बस यही मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो जो कि आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: यार मचा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक का दवाई ना ही थी।
4: जो भला छा छुआ तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार एक मसलो हुजे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भूख सही लगे थी, जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना।
4: यार तुझा घना न बस एक ही मसलो आ।
3: हिक इहो की है?
4: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो न ताकत मिलंदी।
3: तो पो मां छा कया?
4: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, एक कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो मजबूत करे छींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
4: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवा खाना रोड़ी, आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अमाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, और ये कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, NICBD रोड सखर, हैदराबाद एंड लाड़काने जो मशहूर, डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी, DHMS, RHMP, इस्लामाबाद, जोड़न, संधन जो सूर, कुंदरग जो सूर, कंघे जो सूर, हडन जो भरण, अध मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जो सूर, खारिश, बारन में कद जो न वधण, मोटापो, इन खां अलावा पित्ते गुर्दे एंड मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। टाइम सुबह 10 खां शाम 6 वगे ताई। एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक, नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर। हर जुमे आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त। रश का बचन आई नंबर वठन लाए 0327-84-60-746।
6: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील महा से और बेजानपन, अब सबको कहे अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
7: खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बेकार
6: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
7: DHMS सिंध,
6: RHMP इस्लामाबाद,
7: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
6: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
7: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
6: कमर दर्द,
7: अर्कुन निसा,
6: जोड़ों का दर्द,
7: हेपेटाइटिस,
6: वजन की कमी या ज्यादती,
7: बे औलादी,
6: गंजपन का मुकम्मल इलाज
7: और दीगर मुख्तलिफ
4: مختلف بیماریوں کے ماہر ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان.
6: ٹائم
4: ہفتے سے جمعرات
6: صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک.
4: آغا ہومیوپیتھک کلینک,
6: پولیس ہیڈ کوارٹر چوک سکھر.
4: رابطے کے لیے
6: 03262200440.
8: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے. ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں. انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے

आई थिंक इसकी लवली क्रीम आप लास्ट में परचेज कीजिए और आपकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और हमेशा आप खूबसूरत रहेंगे। तो जरूर ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखें ताकि आपकी खूबसूरती भी आपसे बोले कि हाँ जी भाई अब सब

गानो एतरो खूबसूरत आना बुधी करे मतलब ये डाडू भलो महसूस थींदो आहे आई गानो मुखे डेडिकेट हुयो और ये आपके मैसेजेस हैं जिनको हम जाहिर सी बातें पढ़ेंगे। अच्छा पैनल की जाने बातें हैं तो एक मिनट मैंने कहां तक आपके मैसेजेस पढ़े। अच्छा हाँ ये हमारे साथ फिरदोस भाई हैं और फिरदोस भाई कहते हैं अच्छा क्या मतलब आपने ये शायरी लिखी है। अच्छा कहते हैं तुमने ऐसा किया मेरे जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से, मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से। वाह वाह वाह वाह।

बड़े दिनों के बाद हमने ये गाना सुना है, इसी के साथ साथ ये गाना बस उनको डेडिकेट करते हैं जिनको ये अच्छा लगेगा। और साथ साथ अगर आप वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हमें बता दिया करें, ठीक है, शर्माया मत करें। और चाचा खालिद कहते हैं, भला पो ही वारो गानो हलायो, माँ पे केडो सिदरा चलो आया, तुझे शो में वरी वरी आया, छो भला मना है मुझे शो में अचानक आज शो आ नहीं ना बाकी।

अच्छा कयो के हो डेडिकेट, ये जरा राज की बात है, वो राज में रखी जाएगी. अच्छा ये सकलेन अब्बास हमारे साथ है. सकलेन अब्बास आपको वेलकम एंड खुश आमदीद.

हाँ जी बिल्कुल, अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हानी मुझे दिल जिकाने थोड़ी राजी थी यार, ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आई दो वाला सदरा की लाई लाई कमेंट्स की आदत है विजी शरीर था ना एनर्जी के ये बिगाड़ो भी तो ता है ना अच्छा दर्दी दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश जी नवाजिश। अच्छा ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, आप कैसी हैं? मैं सफा भली आया और कहती हूँ सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को, और कहती हैं कि चापेक बहुत मर्तबा देखती हूँ, बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जे को गानो ना ही ऐसा फजीला सिंधी जे तरफा उन जे हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था ठीक है।

अरे सच्ची बताऊँ, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ, तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना सर्च हुए. मुझे तो 4-5 घंटे मिलनी चाहिए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ. तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और उसके साथ साथ जो है ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा एसन वैसे तव्हां चओ सही था, पर तव्हां खे बि जेको आहे न जुमेवार ॾींहुं मोकल हूंदो आहे न, मुंहिंजी मोकल त माना तव्हांजी बि मोकल, सभिनी जी मोकल, सभु मज़े करेंगे। अच्छा ये नूरे सिंह दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, एंजॉय करें एंजॉय करें। वासु भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो वासु भाई। प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, बहावल नगर से हमारा शो ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू जी, वेलकम करते हैं आपको।

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई भाई। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ। वैसे माई चवंदी माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहियां जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है। तो ये है से पहले आप लोगों ने व्हाइट एश की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना, अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट एश की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके थी छा लगायो थी। अरे सुमाटो गोपांग कहते हैं कि सिद्धरा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो पोइ ईअं ई तव्हां हमेशह बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी में। उन खां अलावा हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा आहियूं त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सुभाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। चाचो चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे रास की बात है वैसे असांखे बि

अच्छा दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही ले शायद इतनी मर्तबा भाई अल्लाह वैसे वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था तो छुट्टी दे दे मेरे को, माफ कर दो। अच्छा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा, और आप जो है ना वो वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। वैसे वाइट एज के प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं ये भी आप मालूमात जरूर जो है ना वो लिया करें, ताकि आपको ये पता चले कि हम कहां से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595, ठीक है। वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा आज, पता नहीं कि आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू, तो यस यस मैं जा रहा हूँ। सो भाई मोकलानी नाइस, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: It's 3 PM. This line check is brought to you by.
1: जड़े माँ पांजो ख्याल रखन्दी आहे, तो सेहत नसलन ताई हलन्दी आहे। ही पेगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। डींह जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मी खां बचाओ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
1: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब

0: क्या समझे?
1: मैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: क्या देख रहे हो?
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
6: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
8: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जो जवाब जो कुझु ॾींहं ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि वक़्तु घटि आहे, जेसिताईं को वाइदो नथो थिए ईरान खे को बि डिफ न ॾींदासीं, न ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त ॾींदासीं। असांखे ईरान खां सही जवाबु हासिलु करणो आहे, हुन लाइ कुझु ॾींहं इंतज़ार करे सघूं था। हाणे जिन ईराननि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अरब मीडिया मूजिबि मुसवदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ पाकिस्तान जी अहम शख़्सियत अॼु तेहरान पहुची ईरानी कैदर सां मुलाक़ात कंदी। ईदुल अज़हाबाद इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर दौरान जंगबंदी मुआदे ते सहियूं थियण जो इम्कान आहे। पाकिस्तानी अहम शख़्सियत जे अॼु वारे दौरे बाद ईरान ऐं अमरीका विच में हतमी मुआदे जे मुसवदे जो ऐलान थी सघे थो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम न आहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तान जी टहकड़ी सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदी फौरी तौर ख़तम कई वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेको चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न पर असांजा हक़ आहिनि। दुश्मन जी चालाकियुनि मां ज़ाहिर थिए थो त उहे जंग जे नए दौर जी ॻोल्हा में आहिनि। वधंदड़ मुआशी दबाउ ऐं घेराउ ईरान खे हथियार फिटाकण ते मजबूर नथो करे सघे। सदर ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ जो रद अमल। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद अमल ॾींदासीं। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बीचारे जो मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु आहियूं।

0: सिक्योरिटी फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान फितरत अल खवारिज जो अहम कमांडर बसीर मारजी वो सदस अफगान साथी गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सिस पारा इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद से सारानन के इलाके अर्जन कली में कार्रवाई कई वही। सिक्योरिटी जर मूजिब खारजी दहशतगर्द कमांडर बसीर नूरुल्ला जो पुटो जो केतर ही सिक्योरिटी फोर्सिस से हमलन की मनसूबाबंदी में मुलविस हो।
1: जब कोर्ट में वो पेश हुई है तो उसने वो वहाँ पे ये बात की है और जो कि बहुत चलाक सी मुलजिमा है तो उसने ये कहा सिर्फ जो रिमांड को डिनाई करने के लिए ताकि उसको रिमांड ना उसका ना मिले कि हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अभी तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी जो चीज़ रिमांड में है तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल बेस्टेस बात है।
2: ये भी चूंकि तफ्तीश अभी देखिए शुरू हुई है, उनके नाम आए हैं लेकिन मैं बिल्कुल प्री मेच्योर कोई बात करना नहीं चाहता। कोर्ट में पेशी के दौरान जो बेजाबतियाँ हुई उसके ऊपर हम एक एस एस पी के खिलाफ एक्शन लिया, एस एच ओ खिलाफ एक्शन लिया, एसआईओ के खिलाफ एक्शन लिया, आईओ के खिलाफ एक्शन लिया और गवर्नमेंट की इसमें रिजॉल्व है। हमें किसी तरफ से किसी भी तरफ से प्रेशर नहीं और ना ही इसमें प्रेशर लेना चाहिए। जीआईटी में कोई और उसके हेड हैं तो मेरे ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, वो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चल। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मोमेंट की है जिसमें उसको पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसी बेजाबतियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
0: मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी एंटने मस्ती में कारा तोहमत हणी कतल कल खालदा चांडियो के कतल वार मामलों से पुलिस अमलदार की सैनेट कमेटी आरोप पेशी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान घरू मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग डींदे पिंकी के नेटवर्क में सिंध और पंजाब पुलिस जहा एहलकार भी मुलविस उन्होंने खिलाफ कार्रवाई थी। पिंकी कें भी सियासतदान जो नालो ना वरतो, उन बनी गाला जो नालो रुगो सियासी कवरअप ला वरतो। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब कमेटी के बुधा तो नारी खालदा चांडियो पसंद पड़ने लाइ घर निकली वही हुई, खेस वापस कराए जिरगे में कतल की फतवा जारी कई वही। कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार कया है, को भी सजा का बची न सो। कमेटी चेयरमैन समीना जहरी तो गैरत के नाले से औरतन के कतल करने की इजाजत नहीं दे सकते।
3: पीडीए में पंजाब चनाब दरिया लाइ फ्लड अलर्ट जारी कर छोड़ो। सलाल डैम जहा एसपेल रे गेट्स 21 मई ते सुबह 9 वगे का 30 मई तक खोलिया वा। पीडीए में मौजूद चनाब दरिया में पानी सत 2-3 मीटर ते वधण जो खर्चो है। गुजरावाला सियालकोट गुजरात हाफिजाबाद मनी बावल तीन फैसलाबाद जंग टोबा टेक इंस्टीट्यूट में हाई अलर्ट। डीजीपीडीए में लागापियल जिले में कंट्रोल रूम 24 कलाक फार रखने की हिदायत की वही है।
0: आपाशी खाते करोड़े रुपया किथे खर्च कया, वाहन और शाखन की हालत बदस्तूर खराब है। गैर फाल बणल आपाशी खाते लाए 1 अरब रुपये की वधीक स्कीम मंजूर। शिकारपुर के बेगारी कैनाल सिंध कैनाल गोहर शाख लुंडी शाख समेत बेन शाखन में वाहन की न खोटाई थी और नई वरी टुटल दरवाजन की मरम्मत थी सकी। लाड़काने में मौर्या लूब बंद के मथाए पासे की मरम्मत लाए 1 अरब रुपये की स्कीम भी मंजूर। 2025 की बोर्ड में मौर्या लूब बंद बाबत आपाशी खाते मॉडल स्टेडी कराइण बदरा सिर्फ तजवीजन की बुनियाद 1 अरब रुपये की स्कीम तैयार कई।
3: हिंदुन के रूहानी

की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

जे खात्मे ताईं जंग जारी रहंदी। शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो लाज़वाल फ़ख़ुरु आहिनि। मादर वतन में अमुन शहीदनि जी क़ुर्बानीनि जे करे आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तक़रीब खे ख़िताब। ISPR मूजिब GHQ रावलपिंडी में अस्करी अवार्ड्स जी तक़रीब कोठाई वई। फील्ड मार्शल पाक फ़ौज जे आफ़ीसरनि जवाननि खे एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां फ़ौजी आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे 50 सितारा इम्तियाज़ ऐं 12 तुगमाए बसालत ॾिना विया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर शहीद फौजी आफिसरनि जवानन के वारसन के सलामी भी पेश कई।

वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी तहरान में ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराकी सां अहम मुलाकात। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई मूजिब पाकिस्तान जो घरू वज़ीर पैगामन जी मटासटा में सहूलत लाइ तहरान में मौजूद है। अमरीका पारा नयू तजवीज़ू मिलियो आहिन जिन जो जायज़ो वठी रहा हूं। असां जेकी चाहूं था उहे मुतालबा न पर हक आहिन। पाबंदियूं हटाइण बि मुतालबनि में शामिल आहे। ईरान अमरीका जे नुक़्ताए नज़र जो जाइज़ो वठी रहियो आहे। हुर्मुज़ लाइ नओं मैकेनिज़म क़ाइमु कंदासीं। ग्लोबल समूद फिलोटेला जे गिरफ़्तार कयल समूरनि मेंबर्स खे इसराइली क़ैद मां आज़ादु कयो वियो। इसराइली अख़्तियारनि जी तस्दीक़। तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर मूजिब आज़ादु कयल समूरनि माण्हुनि खे तुर्किया मुंतक़िल कयो पियो वञे। गज़ा इमदाद खणी वेंदड़ 400 ॼणनि खे इसराइली फोर्सिस तर्फ़ां गै़रक़ानूनी तौर हिरासत में वठण जी पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया पारां मुज़म्मत। कैनेडा, फ्रांस, इटली, नैदरलैंड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इसराइली सफ़ीर खे तलब करे वरितो। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, ॾखिण कोरिया, कतर ऐं तुर्किया तर्फ़ां मुज़म्मत। पीपल्स पार्टी जे सेनेटर पीटीआई मेंबर्स खे स्टैंडिंग कमेटी में कमेटीज़ में वापसि अचण जी सलाह ॾेई छॾी। सेनेट जे इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे शीरी रहमान चयो, तव्हां पंहिंजी जाइ छो ख़ाली छॾे ॾियो था? कानून वारे वज़ीर आज़म नसीर तारड़ चयो त क़यादत पहिरियों भेरो जेल नाहे वई ऐं न ई पहिरियों भेरो मुलाक़ातूं बंदि थियूं आहिनि। मामला अदालत में आहिनि। एग्ज़ीक्यूटिव वटि केस ख़तमु करण जा अख़्तियार नाहिनि। असां पीटीआई सां वेहण लाइ तयारु आहियूं। पीटीआई जे सेनेटर फैसल जावेद चयो त असांखे कमेटियुनि में वापसी जे लाइ पीटीआई बानी खां पुछणो पवंदो। असांजे बानी सां मुलाक़ात करायो। सिंधु काबीना कराची बीआरटी रेड लाइन लाट 2 मनसूबे जी अदावत तेज़ करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांज़िट डिपार्टमेंट जी अहम समरी काबीना मंज़ूर करे वरिती। बीआरटी रेड लाइन लाट 2 में देर ते जॉइंट वेंचर मुआदो ख़त्मु कयो वियो। तरक़ियाती कम में देर ऐं नाक़स कारकरदगी ते पुराणो कॉन्ट्रेक्टर रद्द करण जो बि फ़ैसिलो। FWO खे हंगामी बुनियादनि ते मनसूबो सौंपण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। लाट 2 मनसूबो नुमाइश चौरंगी खां मोसबियात ताईं 12 किलोमीटर ते ॿधलु आहे। वॾे वज़ीर जी यूनिवर्सिटी रोड ते अॾावती कमु 90 ॾींहनि अंदरि मुकमल करण जी हिदायत। सिंधु काबीना खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त FWO मनसूबे ते अमलो ऐं मशीनरी मुकमल करे छॾी आहे। वॾे वज़ीर चयो त कराची जे अहम रोडनि जी बहाली लाइ तकिड़ा क़दम खया वञनि। बीआरटी रेड लाइन मनसूबे जे मुकमल थियण सां ट्रैफिक मसला घटि थींदा।

सिंधु काबीना कणक जी चुरपुर ते पाबंदी हणी छॾी। कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जा हुकुम जारी। शर्जील मेमण चयो आहे त ज़खीरा अंदोज़ी जे समूरी कणक ज़ब्त कई वेंदी। असरायतनि पॉलिसियुनि सबबि कणक जो बंपर फसल थियो आहे। हारी कार्ड ज़रिए आबादगारनि जी मदद कई वई। जेलनि में क़ैदियुनि जी खुराक लाइ 91.61 करोड़ रुपियनि जी इज़ाफ़ी ग्रांट मंज़ूर कई वई आहे। आर्टिज़म जो शिकार ॿारनि खे सिंधु काबीना 10 खां वधीक सेंटर क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। IBA खे सिंधु खां ॿाहिरि बि कैंपस क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। हैदराबाद जी औरतुनि खे 23 मई ते मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ ॾिनियूं वेंदियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुभाणे शाहराह भुट्टो जो इफ़्तिताह कंदो। इफ़्तिताह बाद रोड अवाम लाइ खोलियो वेंदो। सिंधु काबीना माहिगीरी ते सालियानी पाबंदी में 15 ॾींहनि जी नरमी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। मलाह 1 जून खां 15 जून ताईं समुंड में मच्छी मारे सघंदा। मच्छी ऐं झींगनि जे नसल जी वाध लाइ हर साल 1 जून खां 31 जुलाई ताईं माहिगीरी ते पाबंदी हूंदी आहे। आबी हयात जे तहफ़ुज़ लाइ माहिगीरी ते मौसमी पाबंदी बरक़रार रहंदी। रुगो 15 ॾींहनि जी नरमी कई वई।

पखो शहर में पसंद की शादी कंदड़ नौजवान जहाँ भायर कत्ल। शहर के मुख्य चौक से मोटरसाइकिल सवार टे जवाबदार। पुलिस एहलकार नदीम संदस भाव जुगनू मेयो के

गोलियों हणी कत्ल, चार जवाबदार गिरफ्तार, केस दाखिल। फाजिल टाउन वारे इलाके में जवाबदारन गोलियों हणी नौजवान शाहनवाज उर्फ बाबू लिगारी के कत्ल कयो। मकतूल के भाव मुर्तजा लिगारी की फरियाद से जवाबदार इमदाद शाह पुट कबूल मोहम्मद शाह, संदस भाव गौस अली शाह और बिन पुटन खुर्शीद शाह सदर अली शाह से केस दाखिल। फरियादी जो चवण है तो जवाबदारन माल के वाड़े में घिरी भाव शाहनवाज उर्फ बाबू के गारगंद कंदे चयो तो तुझो भाव मुर्तजा लिगारी असा के ख्वार कर रो है। इमदाद शाह संदस पुट मंशात फरोश है। मंशात विक्रो करण का मना करते नाराज थी भाव के कत्ल कर वो है। पुलिस जो चवण है तो चैनी जवाबदारन के गिरफ्तार कर वरतो है।

इस्लामकोट भरसा औरत मासूम धीर समेत खूह में टपो दई आबघात करे छड्यो। गोठ खाखणियार में आशका जाल परवेज 8 वरन जी धी फायजा समेत खूह में टपो दई जिंदगी जो अंत आंदो। लाश खूह मां कढराए अस्पताल मुंतकिल किया विया। पुलिस जो चवण है घरू मसले ता औरत धीर समेत आबघात कयो। वाके जी वधीक जांच कई पई वने। गोठाणन मूजिब नारी जो मुड़स परवेज रक्षा हलाइंदो आहे। वाके वक्त घर में मौजूद न हो।

चेल्हार वेझो ॻोठ हरू जे थाणे में हिकु महीनो अॻु परणियल नारी जो खूह मां लाश हथ। वारसनि जो चवणु आहे त नारी चंदा मुड़ुस जी गैरमौजूदगी में खूह में टपो ॾेई आपघात कयो। संदसि मुड़ुसु हैदराबाद में मज़दूरी कंदो आहे। पिथोरो बरसान नौजवान ऐं नारी जा वण सां टंगियल लाश हथ। गुलाम नबी शाह थाणे जी हद ओताक जमील मरी ॻोठ मां नारी जीआं ज़ाल सूतो कोल्ही ऐं नौजवान भूरो कोल्ही जा लाश मिलिया। पुलिस लाश खणाए अस्पताल पहुचाया। पुलिस जो चवणु आहे त जांच कई पई वञे। हिंदुनि जे रुहानी पेशवा संत साधराम जो मढ़ जूं रहड़की में आख़िरी रस्मूं अदा कयूं वयूं। अग्नि संस्कार बाद रहड़की मंदर में तॾो विछायो वियो। साधराम कुझु अरसे खां गुर्दनि जी बीमारी में मुबतला हो। टे ॾींहं अॻु सिंगापुर में इलाज दौरान दम ॾिनो हो। गुज़िरियल ॾींहुं संदसि मढ़ सिंगापुर खां ॾेह पहुचायो वियो हो। ईद उल अज़हा ते टे स्पेशल ट्रेनूं हलाइण जो फ़ैसिलो। शेड्यूल मूजिबि पहिरीं ट्रेन कोइटा खां कराची 23 मई ते हलंदी। ॿी ईद ट्रेन कराची खां रावलपिंडी ताईं हलंदी। टीं ईद ट्रेन 24 मई ते हलंदी।

ऐं सोन जी क़ीमत में 5,000 रुपियनि जी वॾी वाधि थी वई। फी तोलो सोन 4,75,362 रुपियनि ते थी वियो। 10 ग्राम सोन जे अघनि में 4,287 रुपियनि जी वाधि। फी 10 ग्राम सोन 4,07,546 रुपया थी वियो। चांदी जे फी तोलो अघ में 60 रुपियनि जी वाधि थियण बाद फी तोलो 8,034 रुपया थी वियो।

0: लड़ सके।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा

0: कफील देखिए हर पीर और
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आखिरी दहशतगर्द के खात्मे ताईं जंग जारी रहंदी। शहीद ऐं गाज़ी कौम जो लाज़वाल फ़ख़ुरु आहिनि। मादर वतन में अमुन शहीदनि जी कुर्बानीनि जे करे आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तकरीब के ख़िताब। ISPR मूजिबि GHQ रावलपिंडी में अस्करी अवार्ड्स जी तकरीब कोठाई वई। फील्ड मार्शल पाक फ़ौज जे आफ़ीसरनि ऐं जवाननि खे एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां फ़ौजी आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे 50 सितारा इम्तियाज़ ऐं 12 तुगमाए बसालत ॾिना विया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर शहीद फौजी आफिसरनि जवानन के वारसन के सलामी भी पेश कई।

सिंधु काबीना कणक की चुरपुर से पाबंदी हणी छी। कणक जखीरो कंदड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी। शर्जील मेमुन है जखीरा आंदोजी के समूरी कणक जब्त कई वी। असरायतन पॉलिसन सबब कणक जो बंपर फसल थो है। हारी कार्ड जरिए आबादगार की मदद कई वही। जेलन में कैदन की खुराक लाए 91.61 करोड़ रुपये की इजाफी ग्रांट मंजूर कई वही है। आर्टिज्म जो शिकार बारन के सिंध काबीना 10 का वधिक सेंटर कायम करने की मंजूरी दिनी वही। आईबीए के सिंध का बाहर भी कैंपस कायम करने की मंजूरी दिनी वही है। हैदराबाद की औरतुन के 23 मई से मुफ्त पिंक स्कूटीज दिनी वेंद। बिलावल भुट्टो जरदारी सुभाने शाहराह भुट्टो जो इफ्तिताह कंदो। इफ्तिताह बाद रोड अवाम लाए खोलियो वेंदो। सिंध काबीना माहिगीरी ते सालियानी पाबंदी में 15 दिन की नरमी की मंजूरी दई छी। मलाह 1 जून का 15 जून तक समुद्र में मच्छी मारे सकंदा। मच्छी ए झींगन के नस्ल की वाध लाए हर साल 1 जून का 31 जुलाई तक माहिगीरी ते पाबंदी हुंदी आहे। आबी हयात के तहफुज लाए माहिगीरी ते मौसमी पाबंदी बरकरार रहंदी। रुगो 15 दिन की नरमी कई वही।

पखो शहर में पसनि जी शादी कंदड़ नौजवान जा ब भाइर कतल। शहर जे मुख चौक ते मोटरसाइकिल सवार टे जवाबदार। पुलिस अहलकार नदीम ऐं संदसि भाउ जुगनू मेओ खे गोलियूं हणी फरार थी विया। नौजवान जुगनू थॾे ते दम ॾिनो। नदीम लाड़काणे इस्पताल में दम धणी हवाले कयो। कंबर इस्पताल मां पोस्टमार्टम बाद लाश वारसनि हवाले कया विया। वाके जो केस दाख़िल न थियो। नई जवाबदार गिरफ़्तार थी सघिया। 15 ॾींहं अॻु नौजवान काशिफ मेओ मुगेरी बिरादरी जी नारी सां कराची जी अदालत में पसनि जी शादी कई हुई। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जो नोटिस। SSP कंबर खां रिपोर्ट तलब। पुलिस जी ख़ासि टीम जोड़े जवाबदारनि खे फौरी तौरु गिरफ़्तार करण जी हिदायत।

इस्लाम कोट भरसा औरत मासूम धीर समेत खूह में टपो दई आबखात करे छो गोठ खाखणियार में आशका जाल परवेज अठ वरन की धी फायजा समेत खूह में टपो दई जिंदगी जो अंत आंदो लाश खूह में कटाए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस जो चवण है घरू मसले ता औरत धीर समेत आबखात कर वाके की वधीक जांच कई पई वे गोठान मूजिब नारी जो मुड़स परवेज रक्षा हलाइंदो आहे वाके वक्त घर में मौजूद न हो।

चेल्हार वेझो ॻोठ हरू जे थाणे में हिकु महीनो अॻु परणियल नारी जो खूह मां लाश हथ। वारसनि जो चवणु आहे त नारी चंदा मुड़ुस जी गैर मौजूदगी में खूह में टपो ॾेई आपघात कयो। संदसि मुड़ुस हैदराबाद में मज़दूरी कंदो आहे। पिथोरो बरसान नौजवान ऐं नारी जा वण सां टंगियल लाश हथ। गुलाम नबी शाह थाणे जी हद ओताक जमील मरी ॻोठ मां नारी जीआ ज़ाल सूरतो कोल्ही ऐं नौजवान भूरो कोल्ही जा लाश मिलिया। पुलिस लाश खणाए अस्पताल पहुचाया। पुलिस जो चवणु आहे त जांच कई पई वञे। हिंदुनि जे रुहानी पेशवा संत साधराम जो मण जूं रहड़की में आख़िरी रस्मूं अदा कयूं वयूं। अग्नि संस्कार बाद रहड़की मंदर में तॾो विछायो वियो। साधराम कुझु अरसे खां गुर्दनि जी बीमारी में मुबतला हो। टे ॾींहं अॻु सिंगापुर में इलाज दौरान दम ॾिनो हो। गुज़िरियल ॾींहुं संदसि मण सिंगापुर खां ॾेह पहुचायो वियो हो। ईद उल अज़हा ते टे स्पेशल ट्रेनूं हलाइण जो फ़ैसिलो। शेड्यूल मूजिबि पहिरीं ट्रेन कोइटा खां कराची 23 मई ते हलंदी। ॿी ईद ट्रेन कराची खां रावलपिंडी ताईं हलंदी। टीं ईद ट्रेन 24 मई ते हलंदी।

ऐं सोन जी क़ीमत में 5,000 रुपियनि जी वॾी वाध थी वई। फी तोलो सोन 4,75,362 रुपियनि ते थी वियो। 10 ग्राम सोन जे अघनि में 4,287 रुपियनि जी वाध। फी 10 ग्राम सोन 4,07,546 रुपया थी वियो। चांदी जे फी तोलो अघ में 60 रुपियनि जी वाध थियण बाद फी तोलो 8,034 रुपया थी वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायंद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवां जे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है।

0: होम्योपैथिक डॉक्टर हर्ष जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक परोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए रबते जे लाए 0327-99-84-760
1: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां, हाने अवाजे पंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक बरोज जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-763।
3: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे, मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान खिते में ईरान अमेरिका तकरार लाए तकरार तय करण लाए मुख्य किरदार अदा करे रो है। चीन पारा पाकिस्तान की टाकरी की हिमायत कई वही है। चीन हर दुखे वक्त में पाकिस्तान से गड बीठल रो। पाकिस्तान चीन में लागापन जो ही सफर जारी रहो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो पाक चीन सफारती लागापन की मुनासिबत से तकरीब के खिताब। वज़ीर आज़म चयो तो पाकिस्तान बिना कें खौफ के मुतहद चीन की पॉलिसी की हिमायत करे तो। दहशतगर्दी खिलाफ कानून मजबूत कर रहा हूं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी शहरी के सिक्योरिटी दियण में का भी कसर न छड़ी वी। चीनी शहरों के उहाई सिक्योरिटी मिलन घुर्ज जहाँ इतने सदर वज़ीर आज़म के हासिल है। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के खिताब कदे चयो तो चीन से दोस्ती पाकिस्तान की परदेही पॉलिसी जो बुनियादी थंब है। पाकिस्तान चीन सदाई एक बे के बुनियादी मुफाद जो दिफा किया है। मुल्क में पायदार इस्तेकाम अमन के क्याम ताईं दहशतगर्दी खिलाफ जंग कौमी अज़म सां जारी रहंदी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है त शहीद गाजी कौम जो लाजवाल फखुर आहिन। शहीदन की कुर्बानी ऐं पुख्ते अज़म के थोरन सां मुल्क में अमुनमान है। पाक फौज के ऑफिसर्स जवानन के अस्करी एजाज डियण लाए GHQ में तकरीब। फील्ड मार्शल पारा शहीदन के घर भातिन के साबित कदमी ऐं हौसले के भेटा पेश। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल शहीदन के पोयरन ऑफिसर्स जवानन के एजाजन से नवाजो। ईरान की अमेरिका का नयू जंगबंदी तजवीजू मिलने की तस्दीक। ईरानी खबरू एजेंसी मूजिब ईरान अमेरिका के उमायल तजवीजों को जवाब दियण लाए कम कर रो है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क घणन तफसीलन ते एतमाद साज़ीअ जे कदमन ते ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। अमरीका पंहिंजी तजवीज़ुनि में कंहिं हद ताईं इख़्तिलाफ़ घटाया आहिनि। वधीक इख़्तिलाफ़ घटाइण लाइ वॉशिंगटन पारां जंग जी धमकियुनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ॿिए पासे परॾेही मीडिया मूजिबि ईरान 6 हफ़्तनि जी जंगबंदी दौरान ड्रोन्स जे महदूद पैदावार ॿीहर शुरू करे चुको आहे। ईरान फ़ौजी सनअती सलाहियतुनि तवक खां वधीक तेज़ी सां बहाल करे रहियो आहे। ईरानी सदर मसऊद पसिकियान गुज़िरियल ॾींहुं चयो हो त

ईरान खे जिबर सां हथियार छॾण ते मजबूर करण वहम खां सवाइ कुझु नाहे। ईरान जे दौरे ते पहुतल वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी हम मुनसिब इस्कंदर मोमनी सां 24 कलाकनि में ॿीहर मुलाक़ात। ईरानी मीडिया मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि हाणोकी सूरत हाल ते सलाह मशवरा कया। उन खां अॻु मोहसिन नक़वी तेहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी गुज़िरियल ॾींहुं ईरानी सदर मसऊद पज़शकियान, वफ़ाक़ी घर वज़ीर इस्कंदर मोमनी ऐं पासदारान इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी सां मुलाक़ातूं कयूं हुयूं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई नयूं अमरीकी तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक कंदे चयो त मोहसिन नक़वी ईरान या अमरीका विच में नियापन जी ॾे वठि में सहूलियत मुहैया करण लाइ ईरान में मौजूदु आहे।

0: ग्लोबल समूद फिलोटेला के गिरफ्तार कल समूरन मेंबर्स के इसराइली कैदम आजाद किया इसराइली अख्तियार की तस्दीक तुर्किया के परदेही वजीर मूजिब आजाद कल समूरन मानून के तुर्किया मुंतकिल किया वे गजा इमदाद खी वेंदड़ 400 जणन के इसराइली फोर्सिस तरफा गैरकानूनी तौर हिरासत में वठण की पाकिस्तान समेत सारी दुनिया पारा मुजम्मत कैनेडा फ्रांस इटली नेदरलैंड बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसराइली सफीर के तलब कर वरतो जर्मनी बरतानिया स्पेन पोलैंड यूनान आयरलैंड दक्षिण कोरिया कतर और तुर्किया तरफा मुजम्मत सिंधु काबीना कणक की चुरपुर से पाबंदी हणी छी कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई जा हुक्म जारी शर्जील मेमण है जखीरा आंदोजी की समूरी कणक जब्त कई वेंदी असरायतन पॉलिसिन सबब कणक जो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो जी हाँ हाँ अवजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक परोस जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए रबते जे लाए 0327-99-84-763
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: الحمد.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: यू आर वॉचिंग 8 PM बुलेटिन.
4: अमरीका तकरार तय करण लाइ मुख्य किरदार अदा करे रहियो आहे. चीन पारां पाकिस्तान जी टाकरी जी हिमायत कई वई आहे. चीन हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां गॾु बीठल रहियो. पाकिस्तान ऐं चीन में लाॻापन जो ही सफ़र जारी रहंदो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो पाक चीन सफ़ारती लाॻापन जी मुनासिबत सां तकरीब खे ख़िताब. वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान बिना कंहिं ख़ौफ़ जे मुतहद चीन जी पॉलिसी जी हिमायत करे थो. दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कानून वधीक मज़बूत करे रहिया आहियूं. पाकिस्तान में मौजूदु हर चीनी शहरी खे सिक्योरिटी ॾियण में का बि कसर न छॾी वेंदी. चीनी शहरनि खे उहा ई सिक्योरिटी मिलणु घुरिजे जेका हिते सदर ऐं वज़ीर आज़म खे हासिलु आहे. सदर आसिफ ज़रदारी तकरीब खे ख़िताबु कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी जो बुनियादी थंभ आहे. पाकिस्तान ऐं चीन सदाई हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे. मुल्क में पायदार इस्तेहकाम ऐं अमुन जे क़याम ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो लाज़वाल फ़ख़ुरु आहिनि. शहीदनि जी क़ुर्बानी ऐं पुख़्ते अज़म जे थोरनि सां मुल्क में अमुन अमान आहे. पाक फ़ौज जे आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे अस्करी एज़ाज़ ॾियण लाइ GHQ में तक़रीब. फील्ड मार्शल पारां शहीदनि जे घर भातियुनि जी साबित क़दमी ऐं हौसले खे भेटा पेश. ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे पोयरनि आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे एज़ाज़नि सां नवाज़ियो. ईरान जी अमरीका खां नयूं जंगबंदी तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक. ईरानी ख़ाबरू एजेंसी मूजिबि ईरान अमरीका जे उमाणियल तजवीज़ुनि जो जवाब ॾियण लाइ कमु करे रहियो आहे. तेहरान में वसी फ्रेमवर्क ऐं घणनि तफ़सीलनि ते एतमाद साज़ीअ जे क़दमनि ते ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे. अमरीका पंहिंजी तजवीज़ुनि में कंहिं हद ताईं इख़्तिलाफ़ घटाया आहिनि. वधीक इख़्तिलाफ़ घटाइण लाइ वॉशिंगटन पारां जंग जी धमकियुनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे. ॿिए पासे परॾेही मीडिया मूजिबि ईरान 6 हफ़्तनि जी जंगबंदी दौरान ड्रोन्स जे महदूद पैदावार ॿीहर शुरू करे चुको आहे. ईरान फ़ौजी सनअती सलाहियतुनि तवक खां वधीक तेज़ी सां बहाल करे रहियो आहे. ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान गुज़िरियल ॾींहुं चयो हो त ईरान खे जिबर सां हथियार छॾण ते मजबूर करणु वहम खां सवाइ कुझु न आहे. ईरान जे दौरे ते पतल वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसन नक़वी जी ईरानी हम मुनसिब इस्कंदर मोमनी सां 24 कलाकनि में ॿीहर मुलाक़ात. ईरानी मीडिया मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि हाणोकी सूरत हाल ते सलाह मशवरा कया. उन खां अॻु मोहसन नक़वी तेहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हि ॿोल कई वई. वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसन नक़वी गुज़िरियल ॾींहुं ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, वफ़ाक़ी घर वज़ीर इस्कंदर मोमनी ऐं पासदारान इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी सां मुलाक़ातूं कयूं हुयूं. ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई नयूं अमरीकी तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक कंदे चयो त मोहसन नक़वी ईरान या अमरीका विच में नियापन जी ॾे वठि में सहूलियत मुहैया करण लाइ ईरान में मौजूदु आहे.

0: और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पांचे टॉपिक जी तरह से असें प्रोग्राम में टॉपिक ही असान जी प्रोग्राम जी पियो तो इन में एहतियात परहेज केरी सब शे बुधाए पियो ए गदो गद किए थी छा थे हो मुसा गद ओके समझ में ना आयो तो हाने डॉक्टर जे प्रोग्राम में इन टॉपिक जे वसीले सामा समझी सका तो मुखे तकलीफ किथा आई ही असमिन प्रोग्राम में अजो को टॉपिक आया असान जो पैरालिसिस फालिज अदरंग या नाला इन बीमारी जा असल में इन बीमारी जी वजह चाहे प्यार चाहे किथा शुरू थे थी छा थे तो असांगे केड़ी किथा या बीमारी लगी सके थी या असांगे या बीमारी छो थींदी आ या सबई सवालन जा जवाब अजे के प्रोग्राम में आहिन सबनी का पहिरीं याद रख जो फालिज उन्हें पेशेंट के थींदो जें जो ब्लड प्रेशर हाई थे पियो ब्लड प्रेशर जें जो वधे पियो उन्हें जे करे उन्हें के फालिज थी सके थो समिन प्रोग्राम में फालिज थियण जी वजूहात याद रखजो ब्लड प्रेशर जो हाई थियण मेन वजह है दिमाग में धक लगन भी वजह है टियों आए तो घनी स्ट्रेस परेशानियों सोच करण सा दिमाग की कारकर्दगी सुस्त थियण सा किथे ब्लॉकेज थी वे रग दबजी वे तद मन टे आम शूं जैसे कर फालिज थी सकेस तो इन में असा होम्योपैथिक वाला डॉक्टर जेका भी आन एक्स वाई जेड जेका भी खास करे मां आया तो असो सभी का पैर किरदार यो पेशेंट के चवंदा तो असा जेका मेडिसन्स है ना जेका दवाओं वहाँ जिसम से असरात कंदन उन बाद में जिसम से असरात थे जेका रगून टुटन दिमाग वाली ना सजे जिसम के रगून उन में रत जो जो दौरो उनके तेज कंदन स्पीड दींदन मन रत की रफ्तार के वाइंदन रत के छिडरो कंदन उन फायदो ये रत छिडरो तो वे स्पीड थे तो जिथे रग बंद थी वही दबजी अच्छा बंद बंद जो वर्ड आ असाजे आम बराड़ी में इस्तेमाल किया डॉक्टरी में बंद समझो खत्म तो इन कर बंद वर्ड जो चाहें पे तो इनके ये सोचो तो डॉक्टर चाहे तो बंद थी वही तो बंद थी वही कें भी डॉक्टर वर्ड वही चवन बंद थी वही तो चवन डॉक्टर ही चलो तो यह बंद जो वर्ड जो है वह अवजे आम जबान में समझाने के लिए बंद जो वर्ड मैं इस्तेमाल क्या पर असल वर्ड है दबजी वन मन प्रेस थी वन का रग दबजी वे दबण की मुराद ये थी दिमाग में रगन की तादाद तमाम घनी होंदन छो तो जगह थोड़ी है रगू तमाम घनी तो कें जोर से लगन से दबजी वे थी या ब्लड प्रेशर हाई थे तो 200-180 क्रॉस करे तो 200 दाड़ी वे तो उनमें दिमाग से प्रेशर जाम वो रग होंद सन्न नंढी होंद सफा नंढी रत तेज वो का रग में रत फुल अची वो तो हेठी उनकी जगह रग हूँ वह दबजी वी जगह तो है ही को जितनी उन खुली सी वह रग ओतरी खुली बी रगन बया जगह रग हूँ उनकी जगह न मिली तो रत सप्लाई तो यह थी वही दबजी वही मन ये समझी वो दबण जो किरदार ई है उन्हें के अलावा धक लगन जोर सा दिमाग में लगन सा रग दबजी वेंदी है पर इन में चांस तमाम घट थींदा इन तरीके से फालिज थियण के लिए वजह पांजो जो ये फेस है ना शिकल इन अंदर जो हड्डो आको एतरो मजबूत आ सबो आ तो अवां यकदम इनके भनी अंदर इनमें नथा पुछी सको असा जेका डॉक्टर्स जेका सर्जन्स हूंदा वहाँ भी इनके हथोड़े से कौन था भजन उन्हें खबर आ ये टुटन ही को डॉक्टरी फील्ड में औजार हूँ जी अजक असि दौर में ये समझाण के हिसाब से जेका सरियो हों लो हों उनके कटण के लिए कटर हूँ जैसे मुझे हिसाब में चवन गिलेंडर चवंदा तो उस गिलेंडर से उनके सरिये के वही सकूँ था हथोड़े से जोर से ये रखी बी का शे हूँ छिंदी वगैरह होंगी रखी पो वरी जोर से धक लगण पवो वही खुले तो अज दिमाग जो को मसलो थी वो एक्स वाई जेड का भी कड़े भी किस्म की मसलो थी जो उसमें हथोड़े से धक खड़ी उनके फाड़ी पान सोचो हड्डो ही को बचंद तो इन कर गिलेंडर डॉक्टरी में सर्जरी में गिलेंडर होंद आम जबान में गिलेंडर चवंदा बाकी उनमें मेडिकल फील्ड में उनके नालो किया उन्हें सा कटींदा पहले वार साफ कर उनके सफ वार गुम कर उनके धोईंदा तो का भी वार कटियल या साबुत उते न हो बिल्कुल उनके साफ कर उनके पायोडीन से मेडिकल में पायोडीन उन्हें सा उनके वॉश कर साफ कर का बैक्टीरिया का जरासीम न होजन उनके बिल्कुल स्टेलाइज कर गिलेंडर से उनके कटींदा तो ज़रात मन गिलेंडर से अड़े तरीके से कटंदा तो नंढे में नंढो ज़रात माना वही शे भी नंढे में नंढी जरा जी पा मिट्टी चवंदा इ मिट्टी
बि दिमाग़ जे अंदरि न वञे, अहिड़े तरीक़े सां हुनखे कटींदा आहिनि। कटण खां पोइ साॻी जॻह वरी वॉश कंदा आहिनि, धोईंदा आहिनि त नंढा नंढा जेका टुकड़ा आहिनि।

0: सन वो आप बाहर निकरन दिमाग में ना वजन उन बाद में एक पर्दो हों लेयर होंगी जी उन ब्लेड की वसीले से उन पंज एक टे चार चार टुकड़न में उन्हें वढ़ा मन विच विच कदी ये तिरछ उन में कटिंदा ये पर्द ये खुली वी हाँ हि रग इन रग के भी चेक कंदा सही तरह बाबा हि रग जो अस कदूँ तो बे तकलीफ नी उन चेक कर जल्दी से उनके स्ट्रेच कर बंद कर सो दिमाग बंद थी वो पट्टी वगैरह ये तरीक़ेकार ऑपरेशन बहरहाल अस ऑपरेशन की गाल न कहसी अस समझाइंदा बुधाने का मकसद गाल निकती तो सजी हकीकत हमारे सामू थे इन कर इन राज के भी मुँह खोले छो अच्छा रग दबजी वेंदी तो दबण में यो असरात थींदा तो दबण में असांखे दवा वसीले से खोलणियो आहे।
1: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। त केर गलाए पे किथा खां
2: सर? सर छा हाल आवाज रंद पियो गलाए सुखपुर मां सर।
1: अदा सब खैर अल्लाह जा एहसान अवां बता की ठीक है हो?
2: दों दों मथे में सूर सर न छोड़े मखे।
1: अच्छा
2: जी जी
1: ठीक है। अदा एफएम बदो डॉक्टर साहब बुधाइन था। डॉक्टर साहब अदे जो सवाल है तो मथे में सूर नथो छड़े तो हिंसर मथे में सूर थियण जी वजूहत थी सकन था सर?
0: ऐसे हिंसर जो गर्मी हुआ तो खास कर गर्मी जहाँ असरा थन्दा सियारे में अलग हूँ गर्मी में असरा अलग थन्दा तो अवं के जो असरा हूँ थी सके मिसाल यह मथे में सूर में अल केतरी गाल पर कुछ कुछ शूँ अवं सामू रखस अवं ये चुन सुबह क्लिनिक खुलल हूँ सुबह नवे का वी शाम जो छह वगे ती जुम्मो बंद ना है जुम्मे वाले ढी सुबह नवे का मंझंद बारह वगे ती क्लिनिक खुलल हूँ टाइम मिले अची पाँ इलाज कराए मथे में सूर थियण की वजूहत ब्लड प्रेशर घट वधीक शुगर घट वधीक गर्मी जो लगन निंड आराम जो न होजन सोच गंतियों वीचार घो होजन मगज में गाढ़ो हो निछू बुखार माइतो अखियन ते नजर जो असरात सब शूं जैसे करे मथे में सूर पे तो अवं के करे वो दिसो पव।
1: डॉक्टर साहब कॉल वो केर सुन अस्सलाम वालेकुम।
3: सही वालेकुम सलाम।
1: साई केर गलाए पे किथा खां?
3: सही गलाए पे नूरपुर खां।
1: अजय दा छा सवाल है डॉक्टर साहब ला?
3: डॉक्टर साहब यो जो मुखे जो का दो जेके हथन जानो आई जेके पेरन जानो हन
0: जी
3: ये मना सार था कन छा जे करे
0: घणो टाइम थियो
3: मना थी आन तकरीबन ब महीना खान थान भाई चक्कू चक्कर हले रहियो सा।
0: अच्छा सड़न था रात जो दीह जो केडी मल
3: मंझन थे दिन वा मंझन जो आई बियो वरी रात जो केडी केडी मल सड़न दा।
0: ठीक वा एफएम बुदो एफएम ते समझ जस्त।
3: ठीक
1: जी डॉक्टर साहब
0: सही जी कॉलर हो मथे में सूर में थे पो छो थे पो तो वह गर्मी के करे थे पो सियारे में अलग शूं और गर्मी में अलग शे तो अवं जहाँ पेर सड़न तिरी सड़न आंगुरू सड़न नुह सड़न हथ पेर बिन्हीं जहाँ उन्होंने सभी का पैर थोड़ा मादे जिगर से गर्माइश गर्मी लगन मादे जिगर से गर्माइश थियण उन्हें अलावा शुगर शुगर में जस्ट है तो पेर सड़न हथ न सड़ा पेर सड़ा तो इन वजाहत के कर आंगुरियों पेर तिरी सड़न थियन अवं के शुगर टेस्ट मुझे हिसाब से जरूरत कान छो तो हथ पेर बई सड़न पड़ी शे नी सड़े अवं मायदे जिगर जो इलाज करना पवो पो वही यह तकलीफ अवं खत्म थी सके थी चेकअप का बाद में ही अस अजा समझा सकूँ तो अवं ये मसलो छ समिन प्रोग्राम में टॉपिक की तरफ वापस प्रे खाँ जो टॉपिक में शूँ लाजमी जो फॉलेज वा अस बुधन पाया उन समझाने के लिए सही टॉपिक में दिमाग के रग जो बंद थियण की वजूहत सब अवं सामू हुई। अच्छा ब्लड प्रेशर 200-680 क्रॉस 200 इन में सिर्फ फॉलेज थियण की चांस न हों या पीछे जहन मरजे तो जिनको ब्लड प्रेशर 180-200 तो उनमें फॉलेज जो ही चांस छो चांस छो हो चांस फॉलेज जो न हों उन्हें गड़ मसला ब्रेन हैमरेज माना दिमाग की रगन जो मसला हार्ट अटैक फॉलेज तिन्हीं बीमारियों में कान का एक बीमारी पेशेंट के जरूर थी है तो उनमें अस पेशेंट के चवंदा तो एतर ब्लड प्रेशर न होने इनके कंट्रोल कर हाँ हलूँ वापस फॉलेज की तरफ रग बंद थी वही मन दबजी वही तो दबण के लिए वजूहत यहाँ इन कें न कें वजह से रग दबजी वे थी। अच्छा सामिन हाँ रग दबजी वही है तो हाँ इन रग जो क्यों कि कड़ो इलाज क्यों रग दबण का असि डॉक्टर एतरा माना अस डॉक्टर जन या मेडिकल फील्ड एतरी एक्टिव नी एतरी अप्रोच न कर सकान रग कड़ी बंद थी पे डॉक्टर बुधा छ दिमाग में इन जगह त रग बंद थी तक इन जगह जो फालिश ये कदें भी नो थी सके वह रग किथा बंद थे थी फालिज साजो खाबो हेठियों दर फेस या लकवा चवंदा वह थे इन में कड़ो थी इं खबर न पवी है यह थे का बाद में ही खबर पवी है तो फालिश थी वो हाँ इन पास फालिश थी इनजो इलाज इलाज की तरफ हल्दी इलाज समझाने के लिए होम्योपैथिक में जो अस इलाज क्यों पाया अस कोशिश यह रही है जी असाबन असाबन इन हथ पेर जहाँ उजलात उन्हें में हरकत जरूर रहे यानी कि रत की गर्दिश हले पेशेंट उन हथ पेर के चुरे लाजमी चुरे जो चुराण बंद कर छो तो समझो यो मफलूस इलाज से कम नो इनके फिजियोथेरापिस्ट वट वो पवो तो इनके बर्दिश कराए तो उन असरात शुरू थे असो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या दिमाग में जो रग के असरात थे उन रग के खोलने की कोशिश कर दवाओं सिर्फ असि उन्दन तो दिमाग में रग खुले दिमाग में रग खुले जो हथ पेर उनमें जो रत की गर्दिश हले बंद न थे हवा हलण की कोशिश कर पेशेंट के भी समझाइंदा कान का शे अड़ी करनी है जैसा ये हथ पेर इस्तेमाल में अचे माना मानों के यूज़ करे हलाए इस्तेमाल करे तो जैसा पेशेंट जहाँ उजलात यो खत्म न थींदा जेका केस बस साल टे साल चार साल पुराने साल पुराना थी वा तो उनमें तमाम घो दुखियाई अमल थी तो वे उनके रिकवर कर में तो जी फालिज है वह एक्सरसाइज जरूर कर दवाओं टाइम से खान इंशाल्लाह रग दिमाग में खुली तो ही पेशेंट की काफ़ी तबियत बेहतर थे शुरू थी
1: डॉक्टर साहब कॉल वाँ अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम अदा केर गल दुआ सही इलाज है सर जी सही सवाल है डॉक्टर साहब ला
2: हाँ डॉक्टर साहब सवाल है जो को जो बा बारह साल
1: जी अदा
2: इनके तकरीबन बह हजार टेवी के आखिर में फर्श से किरी पो
1: जी
2: तो इनके झटका था अचन दवा प्यारियों लेबर तो ठीक है दवा बंद झटका था अचन उच्च माना पेंट से
1: अच्छा छाजा झटका था अचन
2: मुझे झटका दिमाग है झटका दे हथ पेर लोटे तो
1: अच्छा
2: जी जी
1: अच्छा वात में पानी अचे तो जैमें झटका थन था ठीक है एफएम पर तो डॉक्टर साहब बुधाइन था जी डॉक्टर साहब
0: सही झटका अचन था पर वात घिग न पी अचे तो मुराद यो है तो अस इन्हीं केस में दवाओं वसीले से पेशेंट के रिकवर कर सकूं था अच्छा पे गाल रिकवर थी सके तो अच्छा बी गाल तो इलाज इलाज है सही इलाज सभी का पे अस खी हो सीटी स्कैन दिमाग जो सीटी स्कैन कराया हों डॉक्टर तो वह खी उनमें सब्जी जेका दिमाग की हालत आ कंडीशन आ वह उनमें जाहिर थी वी रग झटको लगो मिसाल तौर पर किरिया हो मगज के धक लगो हो तो उन टाइम से दिमाग में थे हो जैसे कर वरी दौरा पन पाया इन के अलावा असा होम्योपैथिक वा जो ना वहाँ केस के खोलींदा तो समझंदा तो शुरुआत हाँ थे पो अगत सब गाल समझंदा वो इलाज कंदा तो एपीवाल की जरूरत छो पे पी या शे भी नोट कंदी अस छो पे पी ए झटका मुसलसल छो ना मिसाल है गाल बाबा केदी मल थे पाया केदी मल न पे थन दवा हले पी न पे थन दवा खत्म थे पी तो ये वजह है दवा ते तो पेशेंट न हले न पेशेंट हले मानी ते खाधो पुत तो हले या दवाओं ते न पेशेंट हले तो ये सब शूं असा के सीटी स्कैन समझाइंदी तो यहाँ मसलो है जैसे कर दवा से पेशेंट तैयार हले पो दवा खत्म थे पी तो पेशेंट बीमार थे पो उनकी वजह यह है तो दिमाग में जो झटका थन पाया एपीवाल झटकन के रोके पी तो वो झटका रुकन पाया पर खत्म न पाया थन और झटका आया छो ये सब सीटी स्कैन में खबर पवी झटक किरिया हो धक लगो दिमाग में कड़ी जगह धक लगो का रत जमल रग दबजी हुई है वो सब सिटी स्कैन में होंगी हाँ सिटी स्कैन खड़ी इंदा पेशेंट अची सके तो बिस्मिल्लाह बेहतरीन तमाम सुनो गाल हों तो पेशेंट के वी सिटी स्कैन वी एपीवाल जो दवाओं इस्तेमाल कर पाया खी इंदा टेस्टू रिपोर्ट दिया पे वह खी अचो सभी हकीकत साम्हूं पई हूंदी तो थी सके असां वटि इलाज हूंदो असां इलाज कंदासीं जो बहितर इलाज तव्हांखे मिली सघे त असां होॾां बि रेफर कंदासीं। असांजी फस्ट शइ इहा थींदी आहे होम्योपैथिक जी बि चवणु इहो ई आहे पेशंट तयारु थिए जेको आयो आहे उहा तयारु थिए दवा असां वटि अवां सम्झी हुनखे ॾेई सघो था ॾियो न त कंहिं ॿिए डॉक्टर वटि मोकिलियो त पेशंट तयारु थींदो अव्हांखे दवा मिलंदी तव्हां वटि न थिए पर तव्हां कस त ॾिनो न अलाह त ॾिसे पियो त इन करे अव्हां परेशान न थियो इनशाला असां वटि ईंदव त अलाह त कंदो ज़रूरु कोन को कामयाबी मिलंदी। सभिनि प्रोग्राम में टॉपिक जी तरह वापसि हलंदासीं छो त फालिज वारो टॉपिक आहे इहो ख़तरनाक टॉपिक आहे असांजो फालिज में इलाज जेको हो उहो असांजे प्रोग्राम में अव्हांखे सम्झी आयो त रग खुलंदी ऐं इन मांसपेशियुनि खे अव्हांखे ताक़त हलंदी ताक़त मिलंदी रहंदी त इहा मुर्दा ख़तमु न थींदा ऐं असल में फालिज थियण खां पोइ हथ ऐं पेर हिकिड़े पासे जो हेठियूं में सुन छो थियनि था उनजी वजह छा आहे उनजी वजह छा आहे त दिमाग़ में जेका रग आहे उहा इहा सिग्नल हेॾां वञणु न पई ॾिए अव्हांजा जेतिरा मां तव्हांखे सम्झायो दिमाग़ में सिग्नल जे थ्रू कमु हलंदो आहे रग तारूं हूंदियूं आहिनि जीअं का गिटार आहे वाजो आहे हुन में तारूं हूंदियूं आहिनि पाण त दॿाईंदो त आवाज़ु निकिरंदी आहे त अहिड़े हिसाब सां दिमाग़ में सिग्नल जे थ्रू सभु कमु थींदा आहिनि उहा सिग्नल हुन जॻह ते पहुचनि न पिया तंहिंजे करे हू जॻह सुन आहे सुती पई आहे ऐं उन दिमाग़ खे इहो अहसासु कोन्हे को त हीउ हिसो बि मुंहिंजे ई आहे हिन जिस्म जो ई इहो हिसो आहे जेसि ताईं हुनखे इहा अहसासु थींदो पोइ ई हथ पेर आङुरियूं सभु चुरणु शुरू थी वेंदियूं तॾहिं थींदा आहिनि फालिज ऐं फालिज थियण खां पोइ जेको हथ पेर सुन थियण जी वजहात इहा थींदियूं आहिनि ऐं असांजा होम्योपैथिक डॉक्टर चाहिनि त सभिनि खां पहिरीं दिमाग़ खे रग खे खोलींदा आहिनि त वरी रिपीट न थिए ऐं हुन में ब्लड प्रेशर खे कंट्रोल कंदा आहिनि त वरी फालिज दुबारा फालिज वरी फालिज न थी सघे त इहा तरीक़ेकार आहे होम्योपैथिक जे इलाज में फालिज जो। अच्छा हाणे फालिज में एक्सरसाइज़ बि ॿुधंदा हलो त एक्सरसाइज़ जे मिसाल तौर ते असांजे साॼे पासे खाॿे पासे थी वियो आहे फालिज उन में का बॉल प्लास्टिक जी का रबड़ जी का शइ हथ में रखी उनखे बंदि करण जी कोशिशि कबी जीअं पाण मुठ बंदि कंदा आहियूं मुठी बंदि कंदा आहियूं अहिड़े हिसाब सां उनखे बंदि करे खोले बंदि करे खोले इहा चुरपुर लाज़मी आहे हथ भित ते रखी उनखे मथे करे हेठि करे मथे करे हेठि करे इहा एक्सरसाइज़ थी वई ऐं कोशिशि करे त पाण हथ खे मथे खणण जी पेर बि पंहिंजे पाण मथे खणण जी कोशिशि करे ऐं कोशिशि करे त का हल्की शइ पेर में बधी उनखे लटकाए छॾे त जंहिंसां पेर में आहिस्ते आहिस्ते उहा सुन शइ ख़तमु थिए ऐं कोशिशि करे पेर खे मथे खणण जी मथे खणंदो त ही कमु थी सघे थो। जैतून जो तेल आहे उन सां मालिश आम जाम थिए पई आम जाम करे सघो था पर मालिश जो ख़्यालु रहे त असांखे मालिश करणी आहे असांखे उन जॻह खे दॿाइणो कोन्हे को सिर्फ़ु एतिरी मालिश थिए त तेल जज़्ब थिए सिर्फ़ु हल्के हा सां आराम आराम सां माटे माटे रगड़े रगड़े ॻाढ़ो न करे छॾियोसि इहा शइ ज़हन में रहे सिर्फ़ु हल्के हथ सां मालिश कबी दिमाग़ खे जैतून जो तेल बि लॻाए सघो था बादाम जो तेल बि लॻाए सघो था खाइण में बादाम बि इस्तेमालु करे सघो था लूणु बंदि करे सघो था जंहिंसां अव्हांजो ब्लड प्रेशर कंट्रोल थींदो ऐं अव्हांखे वरी रिपीट फालिज नथो थी सघे। कोशिशि कयो ॾींहं में हिकिड़ो दफ़ा ॿ दफ़ा पंहिंजे पेरनि ते बीहण जी कोशिशि कयो सहारे सां ही ॿ माण्हू खणी क़ाबू कनि त पेर ते वज़न ॾिए त जंहिंसां उनजो पेर ते वज़न ईंदो त आहिस्ते आहिस्ते हू चुरणु शुरू थी वेंदो हलणु फिरणु शुरू थी वेंदो दिमाग़ खे अहसासु थियणु शुरू थी वेंदो छो त इहा एक्सरसाइज़ चवण मुताबिक़ न इहा छा आहे इहा को एक्सरसाइज़ आहे पेर ते बीहण सां छा थींदो पर नंढी उमिरि में जेॾीमहिल ॿार पैदा थींदो आहे उहो डायरेक्ट पेर तां नथो हले पहिरीं बामणा पाए थो बामणा पाइण खां पोइ उथे ई खटनि खे वठी हलंदो आहे पोइ ॿ टे चकर किरंदो आहे पोइ ई स्टार्ट थी पवंदो आहे त इन हिसाबिक त जेकर ॿार पेर में साॼो पासो हेठी धड़ जेको बि फालिश थिए त उन में अव्हांखे बि अहिड़े तरीक़े सां ई पंहिंजो कमु करिणो आहे नंढी उमिरि में बि तव्हां इएं करे पंधु करणु भॼणु शुरू थिया आहियो त हिन उमिरि में तव्हां ईअं ई कंदा त जंहिंसां वरी दिमाग़ खे सिग्नल मिलंदा त हाणे ख़ौफ़ न खा हिमत कर अव्हां बि ख़ौफ़ न खाइजो फालिज हुजे कहिड़ी बीमारी जो ख़ौफ़ न खाइजो कोशिशि कजो पंहिंजी हिमत करे पंहिंजी बीमारियुनि खां उथण जी कोशिशि कंदा कयो इन सां ई अव्हां जी बीमारियूं जल्दी ख़तमु थींदियूं आहिनि ऐं असां डॉक्टरनि खे जल्दी कवर करण में आसानी बि थींदी आहे। सभिनि प्रोग्राम में जेको टॉपिक हो फालिज उन जी वजह छा हुई ऐं असांजा होम्योपैथिक वारा इलाज छा कंदा आहिनि एक्सरसाइज़ छा हूंदी सभु शयूं अव्हांजे साम्हूं ज़ाहिर थी वियूं ऐं उन खां अलावा खाधे में लूणु वग़ैरह बंदि थींदो साई भाॼी इस्तेमालु थींदी इहा शयूं बि अव्हां यादि रहियो पाणी जूस वग़ैरह इस्तेमालु कजो इहे सभु शयूं अव्हांखे ज़हन नशीन थी वियूं सभु शयूं अॼु जे प्रोग्राम में फालिज के जेतरो मां खोले अवां साउंड पेश के थी सके को डॉक्टर एतरो खोले अवां के आसानी सा समझाए पहुंचे थी सके तो पर असान जो फर्ज है तो जेको इलम असान वट मौजूद है असान अवां तानी पहुंचाए छतों इलम देन सा खुटे को तो वधी थी दो आए तो इन करे जेका गालियों असान के फालिज हवाले सा जेका असान अमल कंदा रहना हूं वह सब शो अवां सामू है फालिज अगर को पेशेंट हुए तो परेशान न थे अच्छी पाँजा इलाज कराए मुकम्मल इलाज कराए यकदम एक दवा ब दवा में तैयार न तो थी सके वक्त टाइम इन मसले में जरूर लगना चाहे वो मुखा कराए चाहे वो किथा कराए वक्त जरूर लगन तो दिमाग आ न रगू खुले कम थे पो मांस में हड में ताकत अचे हले फिरे चुरे उन वही सहतिया थे ताकत अच्छे जिसम में ब्लड प्रेशर कंट्रोल गाल डेगन वरियों तो इन कर इनमें थोड़ा वक्त भी लगे तो परेशान थे जरूरत कने का इनशाला अल्लाह से उम्मीद है पेशेंट हों फाइजर जरूर तैयार थन्ा असि होम्योपैथिक दवा से एतरो रिजल्ट है अवं पान जैम खाण शुरू कौ तो आस्ते आस्ते पान महसूस कौ तो यार ये दवा तो दिसण में तो अचे थी पानी आ थोड़ा जो असा हों पीण में दिसण में तो पानी आ पर पानी को इनमें कड़ो जादू आको अस जिसम में जी वे तो ती अस माना मचाए तो अबा होशियारी कर तैयार थी हाँ मैं अची वहाँ तो ये सब शे दवा जा हर दवा जो पांचो टाइम पीरियड आई कम किरदार हूँ तो इनमें ये न चबो तो होम्योपैथिक फिलाप है होम्योपैथिक फिलाप को नहीं को हर दवा जो तरीकेकार पांजी पांजी पोस्ट पांजी पांजी पोजीशन रखे तो पर शर्त छाए तो होम्योपैथिक आ तो वह होम्योपैथिक हो हिकमत आए तो वह हिकमत ही होलोपैथिक आ तो वह हेलोपैथिक ही हो तब अस चौदी हाँ दवा भले न लगी पर उन मेहनत पांजी कई मिलाए किलाए टिलाए सिलाए करे दवा देने से मुराद यो तो हुआ पाँजा दुखा पे हणे उन्हें यह खबर को साइड इफेक्ट थी सके अच्छा होम्योपैथिक में जो साइड इफेक्ट यार जो शे आए नुकसान वाली शे आए पर वजह चाहे होम्योपैथिक से गड बी का दवा जो मिलाए करे इस्तेमाल कर साइड इफेक्ट थी सके एतरी जगह है तो उनमें साइड इफेक्ट थी सके तो उनकी दवाओं असर कन वरी असाजी दवाओं असर कन तो बई थी सके कें पेशेंट के नुकसान दई सके बाकी तकरीबन होम्योपैथिक में को साइड इफेक्ट को नुकसान का बीमारी के वधिक थण जी का भी वजह कान का
1: जी हाँ समीन अवां बुधो पिया जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सां मां वाजो पेंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगानी मुसा गड सकर जा मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावी राजपूत साहब समीन अवां डॉक्टर साहब का होम्योपैथिक तरीका इलाज में इलाज कराए दवा वठी सको था डॉक्टर साहब हर बीमारी जा मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब खानदानी डॉक्टर से गड़ो गड़ लेक्चरर पिण आहिन समीन होम्योपैथिक में डॉक्टर साहब रिसर्च कंदा आहिन काफ़ी अज के नयू नयू बीमारियों पैदा थन थी उन्होंने जो होम्योपैथिक में इलाज है होम्योपैथिक में हर बीमारी जो जदीद इलाज है जो जड़ का ख़त्म थे तो शफा जड़ अलाजी साहब जो कम हों अवा डॉक्टर साहब हीलो वसीलो कोशिश कर सको था दुआ घुरंद अल्लाह का दवा खाई इनशाला ज़रूर सेहतियाबी थी होम्योपैथिक में फ़र्क यो है तो होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट को यानी जै शे की दवा वठंदा उन से के फायदो जरूर पवंदो अगर कें असाजे मरीज के फायदो नथो पजी सके तो उनके नुकसान के विषय जो नथिदो यानी कोई साइड इफेक्ट इन में ना है तद होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट ना है चे विदो है हकीकत में भी होम्योपैथिक में कोई साइड इफेक्ट ना है डॉक्टर साहब हियर सकरन शहर में पेंजी क्लिनिक स्टार्ट कर चुका है स्टेशन रोड से हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जिनाल से डॉक्टर साहब जिनकी क्लिनिक है डॉक्टर साहब के दादो मरहूम हाजी इनायत लाल राजपूत जिनकी पुरानी क्लिनिक जी हुई वह ही डॉक्टर साहब जिनकी क्लिनिक है यानी पे खानदानी क्लिनिक में अची पो सेटअप खोलो उतें अची वेठा पे शेरवाणी किरी में डॉक्टर साहब हुआ इन वक्त हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में डॉक्टर साहब जन जी क्लिनिक आहे होम्योपैथिक तरीका इलाज में मरीजन जो इलाज कन था बीमारियों के ख़त्म करने में मदद कन था समय डॉक्टर साहब मशहूर मारूफ डॉक्टर है डॉक्टर साहब काफ़ी तजुर्बो पिण रखे तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में। डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर नोट कंदा 0327-9984-7068 बुढ़ी 37-89-84-76-3 यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर है। एफएम ते कॉल करने के लिए भी है, क्लिनिक ते भी यही नंबर मौजूद होंदो है। समय होम्योपैथिक तरीका इलाज में एक दफा इलाज कराए दिसो, इंशाल्लाह जरूर सेहतयाबी थी। माँ के नंबर नोट कराए, यो नंबर लिखी छो, सुबह अचो डॉक्टर साहब ने कॉल कर सको था। डॉक्टर साहब की टाइमिंग सुबह जो 9 का शाम 6 वगे तई, जुमे ते भी डॉक्टर साहब सुबह जो 9 का मंझंद 12 वगे तई डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूद होंदा। डॉक्टर साहब कॉल वठूँ था, केर सगत मौजूद है किथा का? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
1: अदा रेडियो सेट जो आवाज़ बंद कर, केर गलाए पे किथा का?
4: जी मां सकंड खां तो गलाया।
1: जी सही।
4: जी मां उजागो को दा तो वो खुंगाड़ी थी दी होने।
1: अच्छा उजागे करल का पता जो खुंगाड़ी थी दी होने।
4: हां एक ही रात उजागो को दा तो खुंगाड़ी थी दी ने खार से इन तो सड़न दी होने।
1: अच्छा
4: आई पीड़ी वगैरह से भी गाड़ी ये मथो आ लगनो को बखी सड़न दी होने।
1: ठीक है एफएम पर तो डॉक्टर साहब बताइन ता अजय डॉक्टर साहब उजागे करण सा अखियों गाड़ियों थी थन
0: असें इन तकलीफ़ जो इन बीमारी जो इलाज असा वट ना है इन को इनके इलाज की जरूरत है। अच्छा एक गाल उजागो करण वाली जी तकलीफ़ उन में बाकी जी हवा

0: मथे खे खारिश आहे ॾाढी ॾाढी दवाऊं अचूं पर खंडी खणी हुन खां रत गड़ी थो वञे जिते खंडे मलो थो वञे।
1: अच्छा हा घणे टाइम खां वठी इहा तकलीफ़ आहे?
0: जी साईं हिनखे माना महीनो ॾेढ थियो आहे।
1: अच्छा माना हर साल थिए थो या हाणे ई बसि थी आहे?
0: न हाणे खां थियो आहे तकरीबन महीनो ॾेढ थियो आहे।
1: जी जी
0: एतिरो खने थो माना रत थी थो वञे त मथे मंझि या कननि में जिते खने थो माना रत थो वञे।
1: एफ एम डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था। जी डॉक्टर साहिबु
2: साईं इन जो इलाजु त ईअं सम्झो पहिरीं असांखे इहा जेका तकलीफ़ आहे न इहा ख़तमु करणी पवंदी। ठीकु आहे जेका दाणा थी विया आहिनि रत निकिरे पियो इहा शइ असांखे ख़तमु करणी हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त आहे लाज़मी आहे। बाक़ी थियण जी वजह त थींदा आहिनि चमड़ी जी बीमारी खारिश वारनि जी सही तरह सफ़ाई जो न थियणु वार साफ़ु न हुजनि जीअं माण्हू महीने में को यादि करे यादि आहे त कोई शैम्पू लॻाए साफ़ु करे छॾियो मिटी अथसि उनजे करे इन्हनि जी वजूहात जे करे वार साफ़ु नथा थियनि पोइ ई इहा बीमारी उथले थी। अवां इन शइ जो बि ख़्यालु कयो। अच्छा हाणे ज़ख़्म थी चुका आहिनि त हाणे अव्हांखे का शैम्पू वग़ैरह न लॻायो पहिरीं मूंखे चेकअप करायो पोइ ई मां हर शइ अव्हांखे सुधारे ईअं होम्योपैथिक में इन जो इलाजु थी सघे थो अव्हां अची सघोसि था।
1: डॉक्टर साहिबु अव्हांजो पैगाम छा हूंदो असांजे सामान जे लाइ?
2: शाबाश प्रोग्राम जो टाइम थी वियो आहे ख़तमु जेका कॉलूं रिसीव करे सघियासीं असां कयोसीं बाक़ी जेका रहिजी विया आहिनि त उन्हनि सभिनी चवंदासीं माज़रत टाइम ख़तमु थी वियो आहे। बाक़ी अव्हां सां गॾु सुभाणे क्लिनिक ते अची सघो था अव्हांजो पंहिंजी जेका क्लिनिक ई आहे हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन ते वधीक जेका बि शइ पुछणी हुजे अची सघो था मालूमात वठी सघो था प्रोग्राम में शामिलु न थी आहियो तोखो परेशान न थियो अव्हां क्लिनिक ते अची सघोसि था या का मालूमात वठणी आहे त वठी सघोसि था क्लिनिक ते अची सघोसि था। अॼु जे प्रोग्राम में असांजो जेको टॉपिक हो फालिज जे हवाले सां फालिज जे हवाले सां असांजो प्रोग्राम में टॉपिक हो उन में मुंहिंजी कोशिशि इहा रही त जेको बि इल्मु फालिज जे हवाले सां मूं वटि हो मूं सभई अव्हांजे साम्हूं रखी छॾियो थियण जी वजूहात किथां थींदो इलाजु कीअं थींदो असां इलाजु कीअं कंदा आहियूं हर शइ अव्हांजे साम्हूं रखी छॾी खोले का बि डॉक्टर पंहिंजा राज़ न ॿुधाईंदा आहिनि इहा शइ अव्हां सभिनीनि खे ज़हन में हूंदी को बि डॉक्टर पंहिंजी बीमारी जो कीअं इलाजु कंदो आहे छा कंदो आहे कॾहिं बि नथो ॿुधाए त इहा असांखे ख़बर आहे तव्हांखे छा कंदो तव्हां ॿुधी पर असां एफ एम ते वेंदा आहियूं त असां पंहिंजी सची ईमानदारीअ सां जेका शइ असांखे ख़बर हूंदी आहे उनखे तव्हांजे साम्हूं रखी छॾंदा आहियूं ऐं उनखे बि ईअं ऐं पंहिंजी ईमानदारी सां रखंदा आहियूं त ईअं न थिए त सुभाणे का ॻाल्हि अहिड़ी हुजे त मां चयो यार मूं त इहा ॻाल्हि कोन कई त इन करे असां पंहिंजी पूरी सोचे हर शइ खे अव्हांजे साम्हूं प्रोग्राम में रखंदा आहियूं हीअ बीमारी आहे जी हर शइ जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं अव्हांजो बि फ़र्ज़ु आहे न असां एतिरी महिनत कयूं पिया एतिरा शयूं अव्हांखे सम्झायूं पिया करूं पिया त अव्हां बि पंहिंजो इलाजु करायो असां खां न था करायो त असांजी को एतिराज़ु कोन्हे को पर असांजी ख़ुशी इहा थिए थी त असांजो प्रोग्राम ॿुधी कंहिं बीमारीअ में उन जल्दी करे पंहिंजी बीमारी जो इलाजु करायो हा बि करायो उहो को मसइलो कोन्हे को पर करायो ज़रूरु त इहा असांजी ख़ुशी थी त असांजी ॻाल्हियुनि ते कंहिं अमल कयो अव्हां बि का बीमारी आहे तकलीफ़ आहे मर्ज़ु आहे उनजो इलाजु करायो होम्योपैथिक इलाजु करायो असांजो चवणु इहो ई हूंदो त होम्योपैथिक इलाजु करायो उनजी वजह छा आहे त असां पाण ई इन बीमारियुनि में का बि बीमारी असां बि इंसान आहियूं को जिन कोन आहियूं या को फ़रिश्ता कोन आहियूं असां बि बीमार थींदा आहियूं त असां पंहिंजी इन होम्योपैथिक दवाउनि सां ई पंहिंजो इलाजु कंदा आहियूं त का बि बीमारी हूंदी आहे असांजी इन दवाऊं वसीलनि सां पंहिंजी बीमारी ख़तमु कर असां को वॾे वॾे डॉक्टर वटि कोन बचंदा आहियूं त तव्हांखे चऊं असां वटि अचो असां वञूं कंहिं ॿिए वटि ईअं न आहे असां बि पंहिंजी इहा ई दवाऊं खाए करे पंहिंजी बीमारीअ जा इलाज कंदा आहियूं। सामिन अव्हां हिकिड़ी शइ यादि रखिजो होम्योपैथिक इलाज में हिकिड़ी मेन शइ आहे जेको अव्हांखे ज़रूरु करणी आहे उहा हिते ख़ुशि रहणो आहे दवा खाओ ख़ुशि रहो सोचियो त अलाह कंदो बसि हाणे मां तयारु आहियां पोइ सम्झो त मां दवा ॾियां न ॾियां तव्हां घोड़े वांगुरु तयारु थी पवंदव छो त अव्हांजो इतमान पको आहे या कला ते यकीन पको आहे दवा जेतिरी बि ख़राबु थिए या अव्हांखे टाइम ते न मिली थी वेंदा आहिनि न कॾहिं मूं वटि पेशंट में ईंदा या साईं कज़ो थी वियो मां न अची सघो को मसइलो कोन थी सघंदो हुन पंहिंजे पाण खे पंहिंजे ईमान खे मज़बूत रखियो अलाह हुनखे अजर ज़रूरु ॾींदो। प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु ते प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त सदाई गॾु अलाह वाही अलाह नेगे वाह अॼु मां सलीम थी वियो
1: जीअं त मां मूंसां गॾु हुआ सकरनि जा मशहूरु ऐं मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहबु डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहबु हिसा आहिनि।

0: डॉक्टर साहब ॿाहिरि अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो चोड़नि जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालेज खंघ टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाले जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश पुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु मर्दनि तोड़े औरतनि में वज़न जो न वधणु इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी कीरिया मेहरापुर रोड 10 बाईपास सकरन में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि सॉरी डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि सामिन डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाणे शेरवाणी कीरिया त न आहे डॉक्टर साहब शिफ्ट थी चुको आहे पर असांजी ज़बान जो हेड़े लाइ त थोरो ग़लती थी वेंदी आहे सामिन डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन में आहे वक़्त जो अहसास प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते जॾहिं बि दुआ लाइ खणो पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो ॿिए प्रोग्राम में हूंदसि अवां सां गॾु तेसी मूंखे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु अला वाही अलनि खे पान जेॾां पेर तेॾां ख़ैरो ख़ैर
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रिश्ते में ईरान अमेरिका तकरार लाइ तकरार तय करण लाइ मुख्य किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन पारां पाकिस्तान जी टाकरी जी हिमायत कई वई आहे। चीन हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां गॾु बीठल रहियो। पाकिस्तान ऐं चीन में लाॻापन जो ही सफ़र जारी रहंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो पाक चीन सफ़ारती लाॻापन जी मुनासिबत सां तकरीब खे ख़िताब। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान बिना कंहिं ख़ौफ़ जे मुतहद चीन जी पॉलिसी जी हिमायत करे थो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ कानून वधीक मज़बूत करे रहिया आहियूं। पाकिस्तान में मौजूदु हर चीनी शहरी खे सिक्योरिटी ॾियण में का बि कसर न छॾी वेंदी। चीनी शहरनि खे उहा ई सिक्योरिटी मिलणु घुरिजे जेका हिते सदर ऐं वज़ीर आज़म खे हासिलु आहे। सदर आसिफ ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी जो बुनियादी थंभ आहे। पाकिस्तान ऐं चीन सदाई हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम ऐं अमुन जे क़याम ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो लाज़वाल फ़ख़ुरु आहिनि। शहीदनि जी क़ुर्बानी ऐं पुख़्ते अज़म जे थोरनि सां मुल्क में अमुन अमान आहे। पाक फ़ौज जे आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे अस्करी एज़ाज़ ॾियण लाइ GHQ में तक़रीब। फील्ड मार्शल पारां शहीदनि जे घर भातियुनि जे साबित क़दमी ऐं हौसले खे भेटा पेश। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे पोयरनि आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। ईरान जी अमरीका खां नयूं जंगबंदी तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक। ईरानी ख़बरू एजेंसी मूजिबि ईरान अमरीका जे उमाणियल तजवीज़ुनि जो जवाब ॾियण लाइ कमु करे रहियो आहे। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क ऐं घणनि तफ़सीलनि ते एतमाद साज़ीअ जे क़दमनि ते ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। अमरीका पंहिंजी तजवीज़ुनि में कंहिं हद ताईं इख़्तिलाफ़ घटाया आहिनि। वधीक इख़्तिलाफ़ घटाइण लाइ वॉशिंगटन पारां जंग जी धमकियुनि जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। ॿिए पासे परॾेही मीडिया मूजिबि ईरान 6 हफ़्तनि जी जंगबंदी दौरान ड्रोन्स जे महदूद पैदावार ॿीहर शुरू करे चुको आहे। ईरान फ़ौजी सनअती सलाहियतुनि तवक खां वधीक तेज़ी सां बहाल करे रहियो आहे। ईरानी सदर मसऊद पज़ेशकियान गुज़िरियल ॾींहुं चयो हो त ईरान खे जिबर सां हथियार छॾण ते मजबूर करणु वहम खां सवाइ कुझु न आहे। ईरान जे दौरे ते पतल वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसन नक़वी जी ईरानी हम मुनसिब इस्कंदर मोमनी सां 24 कलाकनि में ॿीहर मुलाक़ात। ईरानी मीडिया मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि हाणोकी सूरत हाल ते सलाह मशवरा कया। उन खां अॻु मोहसन नक़वी तेहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकी सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसन नक़वी गुज़िरियल ॾींहुं ईरानी सदर मसऊद पज़ेशकियान, वफ़ाक़ी घर वज़ीर इस्कंदर मोमनी ऐं पासदारान इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी सां मुलाक़ातूं कयूं हुयूं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई नयूं अमरीकी तजवीज़ूं मिलण जी तस्दीक कंदे चयो त मोहसन नक़वी ईरान या अमरीका विच में नियापन जी ॾे वठि में सहूलियत मुहैया करण लाइ ईरान में मौजूदु आहे।

ग्लोबल समूद फिलोटेला के गिरफ्तार कल समूर मेंबर्स के इसराइली कैदम आज़ाद किया। इसराइली अख्तियार की तस्दीक। तुर्किया के परदेही वजीर मूजिब आज़ाद कल समूर मांग के तुर्किया मुंतकिल किया पो वे। गजा इमदाद खी वेंदड़ 400 जणन के इसराइली फोर्सिस तरफा गैरकानूनी तौर हिरासत में वठण की पाकिस्तान समेत सारी दुनिया पारा मुजम्मत। कैनेडा, फ्रांस, इटली, नैदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसराइली सफीर के तलब कर वरतो। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, कतर और तुर्किया तरफा मुजम्मत। सिंधु काबीना कणक की चुरपुर से पाबंदी हणी छी। कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई जा हुकुम जारी। शर्जील मेमण है जखीरा अंदोजी की समूरी कणक जब्त कई वी। असरायतन पॉलिसिन सबब कणक जो बंपर फसल थो है। हारी कार्ड जरिए आबादगारन की मदद कई वही। जेलन में कैदन की खुराक लाए 91 करोड़ 61 लाख रुपये की इजाफी ग्रांट मंजूर कई वही है। आर्टिज़म जो शिकार बारन लाए सिंधु काबीना 10 का सेंटर कायम करने की मंजूरी दिनी पई। आईबीए के सिंधु

ॿाहिरि बि कमीशन क़ाइमु करण जी कैंपस क़ाइमु करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। हैदराबाद जी औरतुनि खे 23 मई ते मुफ़्त पिंक स्कूटीस ॾिनियूं वेंदियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुभाणे शाहराह भुट्टो जो इफ़्तिताह कंदो। इफ़्तिताह बाद रोड अवाम लाइ खोलियो वेंदो। सिंध काबीना माहिगीरी ते सालियानी पाबंदी में 15 ॾींहं जी नरमी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। मलाह पहिरीं जून खां 15 जून ताईं समुंड में मछी मारे सघंदा। मछी ऐं झींगनि जे नसुल जी वाध लाइ हर साल 1 जून खां 31 जुलाई ताईं माहिगीरी ते पाबंदी हूंदी आहे। आबी हयात जे तहफ़ुज़ लाइ माहिगीरी ते मौसमी पाबंदी बरक़रार रहंदी। रुगो 15 ॾींहनि जी नरमी कई वई। मंशियात केस में गिरफ़्तार अनमोल उर्फ पिंकी जी मोबाइल डेटा जी रोशनी में जांच जो दायरो वधायो वियो। ज़रियुनि मूजिबि मोबाइल डेटा सां समूरे मुल्क में पिंकी नेटवर्क जे ग्राहकनि जा नाला, एड्रेस ऐं फ़ोन नंबर साम्हूं आया आहिनि। मुबैना क्लाइंट्स जे मोबाइल नंबर्स ऐं फॉरेंसिक डेटा जी जांच जारी आहे। कराची जी अदालत पुलिस खे पिंकी जे वेझे साथी जी गिरफ़्तारी ऐं जांच जी इजाज़त ॾेई छॾी। जांच ऑफिसर खे जेल वञी जवाबदार खां जांच करण जी हिदायत। जवाबदार मोहम्मद सुमेर खे जून 2021 ईस्वी में दाख़िल केस में गिरफ़्तारी बाद सेंट्रल जेल में रखियो वियो आहे। जवाबदार मोटरसाइकिल वसीले मंशात सप्लाई ऐं रक़म बैंक अकाउंट में मुंतकिल कंदो हो। पीपल्स पार्टी जी सेनेटर शीरी रहमान PTI मेंबर्स खे स्टैंडिंग कमेटीज में वापसि अचण जी सलाह ॾेई छॾी। सेनेट जे इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे श्री रहमान चयो, तव्हां पंहिंजी जाइ छो खाली छॾे ॾियो था? कानून वारे वज़ीर आज़म नसीर तारड़ चयो त क़यादत पहिरियों भेरो जेल नाहे वई ऐं न ई पहिरियों भेरो मुलाक़ातूं बंदि थियूं आहिनि। मामला अदालतुनि में आहिनि, एग्ज़ीक्यूटिव वटि केस ख़तमु करण जा अख़्तियार न आहिनि। असां PTI सां गॾु विहण लाइ तयारु आहियूं। PTI जे सेनेटर फैसल जावेद चयो त असांखे कमेटियुनि में वापसी जे लाइ PTI बानी खां पुछणो पवंदो। असांजे बानी सां मुलाक़ात कराई वञे।

पखो शहर में पसंद की शादी कदड़ नौजवान जा ब भायर कत्ल। शहर के मुख्य चौक से मोटरसाइकिल सवार टे जवाबदार पुलिस एहलकार नदीम और संदस भाव जुगनू मेो के गोलियों हणी फरार थी व्या। नौजवान जुगनू थडे ते दम दिनो। नदीम लाड़काने अस्पताल में दम धणी हवाले कयो। कंबर अस्पताल में पोस्टमार्टम बाद लाश वारसन हवाले किया व्या। वाके जो केस दाखिल न थियो। नई जवाबदार गिरफ्तार थी सग्या। 15 ॾींहं अॻु नौजवान काशिफ मेयो मुगेरी बिरादरी जी नारी सां कराची जी अदालत में पसंद जी शादी कई हुई। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जो नोटिस SSP कंबर खां रिपोर्ट तलब। पुलिस जी ख़ासि टीम जोड़े जवाबदारनि खे फौरी तौरु गिरफ़्तार करण जी हिदायत। सिंध काबीना कराची BRT रेड लाइन लाट ब मनसूबे की अदावत तेज करण की मंजूरी दई छी। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की अहम समरी काबीना मंजूर कर वरती। BRT रेड लाइन लाट ब में देर ते जॉइंट वेंचर मुआदो खत्म किया वो। तरक्याती कम में देर ए नाकस कारकर्दगी पुरानो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करण जो भी फैसलो

0: इस्लामकोट भरिसां औरत मासूम धीउ समेत खूह में टपो ॾेई आपघात करे छॾियो। ॻोठ खाखणियार में आशका ज़ाल परवेज़ 8 वरनि जी धीउ फाइज़ा समेत खूह में टपो ॾेई ज़िंदगी जो अंत आंदो। लाश खूह मां कढाए इस्पताल मुंतकिल कया विया। पुलिस चवण आहे त घरू मसइले तां औरत धीउ समेत आपघात कयो। वाके जी वधीक जांच कई पई वञे। ॻोठाणनि मूजिबि नारी आशका जो मुड़ुसु परवेज़ रिक्शा हलाईंदो आहे। वाके वक़्तु घर में मौजूदु न हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
3: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो और होम्योपैथिक तरीका इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाँ अवजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक बरोज जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-760।
4: हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

FM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यू आर वॉचिंग 10 PM बुलेटिन।
2: ईरान जी अमरीका का नयी जंगबंदी तजवीजू मिलने की तस्दीक ईरानी खबरू एजेंसी मुजिब ईरान अमरीका के उमड़ियल तजवीजों को जवाब दियण लाइ कम कर रो है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क ए घणन तफसीलन ते इतमाद साजी के कदमन ते गाल बोल थी रही है। अमरीका पांजे तजवीजों में कें हद तई इख्तिलाफ घटाया हैं। वधिक इख्तिलाफ घटाने लाइ वॉशिंगटन पारा जंग की धमकियों को खात्मो जरूरी है। बे पासे परडेही मीडिया मुजिब ईरान चंद हफ्तन की जंगबंदी दौरान ड्रोन्स की महदूद पैदावार बेहर शुरू कर चुको है। ईरान फौजी सनती सलाहियतों के तवक का वधिक तेजी से बहाल कर रो है। ईरानी सदर मसूद पज़ुश्कियान गुजर ढी हो त ईरान के जबर से हथियार छड़ने ते मजबूर कर बम का सवाए कुछ ना है। ईरान के दौरे से पहुंचल वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी की ईरानी हमनसब इस्कंदर मोमनी से 24 कलाकन में बीहर मुलाकात। ईरानी मीडिया मुजिब बिन्हीं अगवाणन हाणोकी सूरताल से सलाह मशुरा क्या। उन अगो मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात कई जैमें बितरफन लागापन से गाल बोल कई वही। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी गुजरल डी ईरानी सदर मसूद पज़ुश्कियान वफाकी घर वजीर इस्कंदर मोमनी ए पासदारन इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातू कई हुई। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई नयी अमरीकी तजवीजू मिलने की तस्दीक कदे मोहसिन नकवी ईरान ए अमरीका विच में न्यापन की डे वट में सहूलत मुहैया करण लाइ ईरान में मौजूद है।

पाकिस्तान खिते में ईरान अमेरिका तकरार तय करण लाइ मुख्य किरदार अदा करे रहियो आहे। चीन पारां पाकिस्तान जी टाखड़ी जी हिमायत कई वई आहे। चीन हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां गॾु बीठो रहियो। पाकिस्तान ऐं चीन में लाॻापन जो हीउ सफ़र जारी रहंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो पाक चीन सफ़ारती लाॻापन जी मुनासिबत सां तकरीब खे ख़िताब। वज़ीर आज़म चयो त पाकिस्तान बिना कंहिं ख़ौफ़ जे मुतहद चीन जी पॉलिसी जी हिमायत करे थो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ क़ानून वधीक मज़बूत करे रहिया आहियूं। पाकिस्तान में मौजूदु हर चीनी शहरी खे सिक्योरिटी ॾियण में का बि कसर न छॾी वेंदी। चीनी शहरनि खे उहा ई सिक्योरिटी मिलणु घुरिजे जेका हिते सदर ऐं वज़ीर आज़म खे हासिलु आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब में चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जे परॾेही पॉलिसी जो बुनियादी थंभ आहे। पाकिस्तान ऐं चीन सदाई हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे। मुल्क में पायदार इस्तेकाम ऐं अमन जी क़यामत ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़मत सां जारी रहंदी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो लाज़वाल फ़ख्रु आहिनि। शहीदनि जी क़ुर्बानी ऐं पुख़्ते अज़म जे थोरनि सां मुल्क में अमन अमान आहे। पाक फ़ौजी आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे अस्करी एज़ाज़ ॾियण लाइ GHQ में तक़रीब। फील्ड मार्शल पारां शहीदनि जे घरभातियुनि जी साबित क़दमी ऐं हौसले खे भेटा पेश। ISPR मुजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे पोयरनि आफ़ीसर्स ऐं जवाननि खे एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। ग्लोबल समूद फ्लोटेला जे गिरफ़्तार कयल समूरनि मेंबर्स खे इसराइली क़ैद मां आज़ादु कयो वियो। इसराइली अख़्तरनि जी तस्दीक तुर्किया जे परॾेही वज़ीर मूजिबि आज़ादु कयल समूरनि माण्हुनि खे तुर्किया मुंतक़िल कयो पियो वञे। गज़ा इमदाद खणी वेंदड़ 400 ॼणनि खे इसराइली फोर्सिस तर्फ़ां गैरक़ानूनी तौरु हिरासत में वठण जी पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया पारां मज़मत। कैनेडा, फ्रांस, इटली, नैदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड इसराइली सफ़ीर खे तलब करे वरितो। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, ॾखिण कोरिया, कतर ऐं तुर्किया तर्फ़ां मज़मत।

कुझु वापारदारनि ॾांहुं रहतुनि जे करे समूरे इलाइक़े जी बिजली बंदि नथी करे सघिजे। सिंध हाईकोर्ट सखर सहिको खे तारूं ऐं ट्रांसफार्मर लाहिण खां रोके छॾियो। अदालत चयो त बिल ॾींदड़ शहरनि खे बिजली खां महरूम करणु बुनियादी इंसानी हक़नि जी भञकड़ी आहे। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन अदालत खे शिकायत कई त सहिको जे गैरकानूनी अमल सबबि शहर में पाणी जे बोहरान खे वधाए वियो आहे। अदालत सीओ सहिको खां 24 जून ताईं जवाबु घुराए वरितो।

0: नवगोठ भरसा मेहड़ रोड से राधनवासी डॉक्टर गोलियों कतल मोटरसाइकिल सवार हथियार बंद डॉक्टर सफदर राजपूत के गोलियों जो खाज बनाए फरार इतला से पुलिस पची लाश कणा अस्पताल मुंतकिल इलाके वासन मुजिब मकतूल डॉक्टर नव गोठ में निजी क्लिनिक का राधन वापस वही रो त रस्ते से मथस फायरिंग कई वही पुलिस के वाके जा कारण मालूम न थिया जांच जारी सिंध काबीना कणक की चुरपुर से पाबंदी हणी छी कणक जखीरों कदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकुम जारी शर्जिल में मुझे है जखीरा अंदोजी की समूरी कणक जब्त कई वी असरायतन पॉलिसिन सबब कणक जो बंपर फसल थो है हारी कार्ड जरिए आबादगार की मदद कई वही जेल में कैदन की खुराक ला 91.61 लाख रुपये के इजाफी ग्रांट मंजूर कई वही है ऑटिज्म जो शिकार बारन लाए सिंध काबीना 10 सेंटर कायम कर मंजूर दिनी आईबीए के सिंध का बाहर भी कैंपस कायम कर मंजूर दिनी वही हैदराबादी औरतों के 23 मई से मुफ्त पिंक स्कूटी से दिनी वेंदू बिलाल भुट्टो जरदारी सुबाने चाराए भुट्टो जो इफ्तिताह कह इफ्तिताहबाद रोड अवाम लाए खोलो वो सिंध काबीना माहिगीरन से सालानी पाबंदी में 15 की नरमी की मंजूर दई छी मलाह पहरी जून का 15 जून तीन समुंड में मछी मारे सकता मछी आई नसल की वाद लाए हर साल पहरी जून का 31 जुलाई तीन माहिगीरन से पाबंदी होंगी है आबी हयात के तहफुज लाए माहिगीरन से मौसमी पाबंदी बरकरार रही रुगो 15 की नरमी कई वही
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 का शाम 6 तक बरोज जुम्मो 12 तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।